सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, ईद उल फितर।
1: रमजान के महीने का मकसद ये है कि भूख और प्यास की तकलीफ को गवारा करने के बाद हमें ये महसूस हो कि भूख क्या होती है और इसकी तकलीफ सहने वाले को किस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर इस बात का एहसास न हो तो हम रमजान की आत्मा को ही नहीं समझ सकते। हजरत मोहम्मद ने यही संदेश दिया और सारी इंसानियत को भलाई की राह दिखलाई। ईद की सही खुशी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने रमजान के तमाम रोजे रखे, इबादतें की और सारी दुनिया की खुशी के लिए खुदा से दुआएं मांगी। ईद के अवसर पर मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म और हर तबके के लोगों को प्यार की डोर में बांधने का संदेश दिया गया है। इतिहास पीछे की तरफ लौटता है तो एक घटना सामने आती है। ईद का चांद नजर आ चुका था

0: चारों तरफ मुसलमान खुशियां मना रहे थे, बच्चे उछल रहे थे इस खुशी में कि ईद के अवसर पर वो नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयां खाएंगे। एक तरफ खुशी का ये आलम और दूसरी ओर एक यहूदी बालक को मैले फटे कपड़े पहने, आंखों में आंसू भरे चुपचाप उदासी की तस्वीर बना हुआ था। हजरत मोहम्मद ने उस बच्चे को देखा, उन्हें उस पर दया आ गई। फिर उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, उसके गालों को चूमा और पूछा, बेटे तुम दुखी क्यों हो, उदासी का कारण क्या है? बच्चे ने उदास स्वर में कहा, मेरा बाप मर चुका है, माँ बहुत गरीब है, मैं अनाथ हूं। दूसरों को खुश देखकर मुझे माँ की बेबसी याद आ गई। हजरत मोहम्मद की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा बाप मैं हूं, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें नए कपड़े दूंगा। फिर हजरत मोहम्मद उस बच्चे को अपने घर ले गए और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन के नए कपड़े उसे पहनने को दिए, जो खास तौर से ईद के लिए बनवाए गए थे। उसके बाद हजरत मोहम्मद उसे ईदगाह ले गए। आज आवश्यकता इसी बात की है कि इस ऐतिहासिक घटना को समझकर, उसकी आत्मा को अनुभूत कर हम तमाम लोग ईद की खुशियों में शामिल हों और हर धर्म के लोग प्यार की शमा को अपने दिल में रोशन करें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ईद उल फितर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है प्याज का रोग एवं कीट। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। पिछले दिनों वर्षा हुई और वर्षा के कारण अनेक कीड़ों और रोगों का प्रकोप जो है वो आपकी प्याज की फसल पर होगा। प्याज की फसल आपके खेत में खड़ी है, आप उसे देखें और रोग के लक्षणों के आधार पर और कीड़ों के दिखाई देने पर कुछ उपाय करें ताकि प्याज की फसल आपकी अच्छी रहे, क्योंकि प्याज की फसल को रोग और कीड़ों से ज़्यादा नुकसान होता है। प्याज के कीड़ों की बात हम करें तो सबसे प्रमुख कीड़ा जो बिहार में लगता है उसका नाम है थ्रिप्स। यह प्याज का मुख्य कीड़ा है जो कि सबसे ज़्यादा क्षति करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। यह कीड़ा पीले भूरे रंग का बेलनाकार आकार का होता है। यह पत्तियों को खुरचकर पत्तियों का रस चूसता है जिससे पत्तियों पर उजले दाग बन जाते हैं, साथ ही पत्तियां सूखकर नीचे की तरफ ऐंठ जाती है। ज़्यादा यदि आक्रमण होता है तो इस स्थिति में पूरी फसल झुलस जाती है और बल्ब का आकार जो है वो छोटा होता है, यानी कि प्याज की जो फसल है वो प्रभावित होती है, उत्पादन इससे कम होता है। आप खेत में जाएं और देखें कि पत्तियां प्याज की यदि ऐंठ रही है, पत्तियां झुलस रही हैं, तो समझ जाएं कि ये थ्रिप्स कीड़े का आक्रमण है। अब यदि कीड़ा ज़्यादा की संख्या में लगा हो तो उसके लिए प्रबंधन करना भी

0: आवश्यक है। इसके लिए 20 पीला चमकने वाला फंदा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक हेक्टेयर खेत में। लेडी बर्ड बीटल, मकड़ी, रो बीटल, ग्राउंड बीटल, सिरफिट फ्लाई जैसे मित्र कीटों का संरक्षण करें और उन्हें खेत में छोड़ दें। वे कीड़े थ्रिप्स को खाते हैं और इससे जो है कीड़े समाप्त हो जाते हैं, नुकसान कम हो जाता है, बल्ब अच्छे बनते हैं और उपज भी अच्छी होती है। इसके बाद बात आती है कृषि रसायनों के प्रयोग की, यानी कि दवाओं के प्रयोग की। तो इमिडा क्लोप्रीड 17.8% SL दवा जो है उसे 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा मिलावें और उसका छिड़काव करें। एक बार फिर से सुन लें, 3 लीटर पानी लें और उसमें 1 मिलीलीटर इमिडा क्लोप्रीड 17.8% SL दवा का प्रयोग करें, घोल बनावें और उसका छिड़काव करें। फी प्रोनील 5% SC 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। या डेल्टा मेथ्रीन 11% WWEC का 0.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। घोल जब बनावें तो ध्यान रखें कि स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। स्टिकर से हमारा मतलब है कि साबुन या वॉशिंग पाउडर घोल में जरूर मिलावें, जिससे कि पत्तियों पर ये दवा जो है वो टिके और कीड़े जहां भी हों वे नष्ट हो जाएं। उसके बाद कुछ रोगों की बात करें तो प्याज के पौधे के ऊपर बैगनी धब्बा रोग, जिसे पर्पल ब्लॉन्च कहते हैं, होता है। यह प्याज का प्रमुख फफूंद जनित रोग है। इस रोग के आक्रमण होने पर प्याज की पत्तियों पर पहले छोटा सफेद गोलाकार या अनियमित आकार के दाग बनते हैं, जो बाद में बड़ा और बैगनी हो जाता है। दाग के ऊपर पत्ते का भाग पीला पड़कर सूख जाता है और फूल के डंठल आक्रांत होने पर बीज बहुत कम बनते हैं, उपज भी प्रभावित होती है। ये बैगनी धब्बा रोग जो है, इसके रोकथाम के लिए आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का व्यवहार करें। अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाई नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, फास्फोरस और पोटास उस मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो सकती है। खेत में खरपतवार बिल्कुल ही नहीं रहने चाहिए। जब भी घास पात हो निकाई गुड़ाई करते रहें। कुछ दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो कीटाजीन 48% EC का 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दवा है जिसका नाम है डीफेनोकोनाजोल 25% EC 1 मिलीलीटर दवा लें, 1 लीटर पानी में आप घोल बनावें और उसका छिड़काव करें। जब भी किसी दवा का घोल बनावें और उसका छिड़काव करना हो तो उसमें स्टिकर जरूर मिला लें। स्टिकर से मतलब हमारा है साबुन, वॉशिंग पाउडर। थोड़ा थोड़ा यदि उसमें मिला देते हैं तो पत्तियों पर दवा की मात्रा जो है रहती है और वो अपना काम करती है। कीटनाशक दवा जो है या रोगनाशी दवा जो है वो नष्ट नहीं होती है, इसलिए स्टिकर का प्रयोग जरूर करें।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था प्याज का रोग एवं कीट। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन

0: रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को

0: ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे थे नात। अब सुनिए भजन लखन पहाड़े की आवाज में।

कार्यक्रम वंदना में अब सुनिए भजन आशीष बंसी की आवाज में।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अगला भजन सुनिए नीरज पटेल के स्वर में।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्ट महिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है डायरिया या दस्त में ORS का प्रयोग। कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज हम बातचीत करेंगे डायरिया अथवा दस्त होने पर ORS का प्रयोग कैसे करें तथा अन्य सावधानियां।
2: बेसिक संदेश यही है कि जब अभिभावक यह महसूस करते हैं कि उसे दस्त हो रहा है, यानी जो कल शौच कर रहा था और आज के शौच में परिवर्तन है, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है या बार बार ज्यादा हो रहा है, वैसी स्थिति में ORS का प्रयोग जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। और ORS फ्रीली हमारे सभी आशा बहनों के पास और स्वास्थ्य केंद्रों पर ANM बहनों के पास भी उपलब्ध है और आशा किट के द्वारा भी हम लोग सप्लाई कराते हैं कि ORS की उपलब्धता क्षेत्र में सुनिश्चित की जा सके। तो ये ORS का कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में देना है, यह ज्ञान होना आवश्यक होता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ORS पैकेट सरकारी तंत्र के अंदर आपूर्ति की जा रही है, उसे साफ और स्वच्छ बर्तन में साफ पानी में 1 लीटर में एक पैकेट को घोलते हैं। पूरा का पूरा पैकेट 1 लीटर हम घोलते हैं और यह घोल सामान्य तापमान पर भी 12 घंटे तक खराब नहीं होता है। इसे आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों को कम देना है, 2 महीने से नीचे के अगर बच्चे हैं तो हम 5 चम्मच तक ORS दे सकते हैं उनके हर 10 के बाद। बड़े बच्चे हैं तो उनको 1/4 से लेकर के आधा गिलास तक दे सकते हैं 2 साल तक के बच्चों को, और जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं 10 साल तक के उनको 1 गिलास तक हम भी आधा गिलास से लेकर 1 गिलास तक दे सकते हैं 1 बार 10 के बाद। तो ये सबसे बड़ा कदम है कि ORS का प्रयोग जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसकी जागरूकता हम जनता में आवश्यक है। कभी कभी अगर उपलब्ध नहीं है ORS हमारे पास तो हम घर पर भी उससे मिलता जुलता बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में 200 ग्राम पानी में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के आसपास चीनी लेते हैं और 1 चुटकी 2 या 3 मिली का चुटकी जो बनता है उसमें जो नमक थोड़ा सा उठे उस नमक को, तो ये आवश्यक कदम होता है कि सबसे पहला जरूरी है उस बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना, यानी उसके अंदर जो पानी की इलेक्ट्रोलाइट्स की शुगर की कमी हुई है उससे उसको बचाया जाए और अपने से

0: कोई दवा या इलाज न शुरू करें, तुरंत आशा बहन से मिलें, क्षेत्र में आशा बहने हैं, ANM है या स्वास्थ्य उप केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन जगहों पर बच्चे को जरूर दिखाएं ताकि उनको बच्चे के देखभाल में और क्या कदम उठाने हैं वो सही से बताया जा सके। मैं यहाँ चाहूंगा कि कुछ और कदम भी बता ही दूं।
1: जी जरूर,
0: ताकि लोगों में जागरूकता आ जाए। डायरिया के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा पहले बचाव की पार्ट है, बचाव का हिस्सा है कि अगर बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान पर रखा जाए तो उसे डायरिया होने का कोई चांस नहीं। हम बाहर से जब उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, माँ का दूध दे रहे हैं, तो वह माँ का दूध उसके मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ ही रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी उसके अंदर होती है और कोई मिलावट का कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाए कि माताएं निसंकोच ये ना समझे कि हम कुपोषित हैं या हमको कम भोजन मिल रहा है या हमको कम लगता है दूध हो रहा है। वो 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं, जितनी बार स्तनपान कराएंगी उतना ज्यादा दूध निकलेगा। स्तनपान कराने की संख्या के ऊपर वह निर्भर करता है, चाहे माँ की पोषण की स्थिति कुछ भी हो। पहला कदम ये है। दूसरा कदम है कि 6 माह पूरा होने पर हम यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार शुरू करते हैं और वह पूरक आहार 6 माह के बाद आवश्यक है, उसकी मात्रा उम्र के अनुसार धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ भी बंद नहीं किया जाता है और कम से कम 2 साल तक अगर बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं इस ऊपरी पोषक आहार के साथ, तो उस बच्चे का इम्यूनिटी इतना डेवलप रहता है कि वह डायरिया से बचा हुआ रहता है। तीसरा है बॉटल फीडिंग, जो छोटे बच्चों में कई बार हम अपनी व्यस्तता के कारण या शौक से भी कि हम अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, बॉटल फीडिंग शुरू की जाती है बच्चों में, जो कि बहुत ही हानिकारक है और उसको स्वच्छ रखना, स्टरलाइज रखना उस निपल और बॉटल को एकदम असंभव सा है। उसमें वो हम बीमारियों को, डायरिया को भी बुलावा दे रहे हैं, तो उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ जब भी बच्चे को खिलाएं तो अपना हाथ साफ करने के बाद, और बच्चा अगर बड़ा हो गया है कभी भोजन में हाथ मारने लायक की उम्र में है तो उसका भी हाथ जरूर साफ करें, और अपना शौच करने के बाद, बच्चे का शौच साफ करने के बाद जरूर हाथ की सफाई रखें, भोजन बनाने से पहले हाथ साफ रखें। कई बार बच्चे शौचालय से बाहर भी शौच कर देते हैं, खासकर छोटे बच्चे, तो उन बच्चों का शौच का डिस्पोजल ठीक होना चाहिए। जल्दी से उसको हम बाथरूम ले जाकर, शौचालय ले जाकर उसको डिस्पोज करें और जल्द से जल्द पुनः हाथ को साफ कर लें।
1: जी, डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था डायरिया या दस्त में ORS का प्रयोग। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विजय प्रकाश राय। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। गजल आप सुनेंगे सुबह के 7:15 पर। कलाकार होंगे नंदिता चक्रवर्ती। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन, राग ललित। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। सुगम संगीत का प्रसारण होगा दिन के 10:30 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11 बजे। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। महिला

0: महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 8 बजे और रात के 10 बजे। बातों बातों में पॉडकास्ट पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 8:15 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यते। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यम् अभवत्। रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद

0: हैदराबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः द्वादश जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यते। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायाम्, IPL क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर् द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस

दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय

0: मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 28 मई है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र कार्यक्रम में हम जानते हैं आज किन प्रमुख व्यक्तियों का जन्मदिवस है। गोपाल रामानुजम, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के सह संस्थापक थे, इनका जन्म 28 मई 1915 ईस्वी को हुआ था। डीवी पालुस्कर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, इनका जन्म 28 मई 1921 ईस्वी को हुआ था। एंटी रामाराव, प्रसिद्ध अभिनेता एवं तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे, इनका जन्म 28 मई 1923 ईस्वी को हुआ था। पिनाकी चंद्र घोष, जो कि भारत के प्रथम लोकपाल हैं, इनका जन्म 28 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। प्रयाग शुक्ल, जो कि हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं, इनका जन्म 28 मई 1940 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम हालचाल में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है। अब जानते हैं आज का इतिहास और देखते हैं कि क्या छुपा है हमारे आज के इतिहास में। 28 मई वर्ष 2002 में नेपाल में आपातकाल लगाया गया था। 28 मई वर्ष 2000 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 6 दिनों की राजकीय यात्रा पर पेइचिंग पहुंचे थे। 28 मई 1999 ईस्वी में बेंजामिन नेतन्याहू का संसद से इस्तीफा हुआ और तुर्की में नई गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। 28 मई 1996 ईस्वी में रूस ने चेचन्या को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ। 28 मई 2008 ईस्वी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत 5 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति किया और 28 मई 2008 ईस्वी को ही विमान सेवा जेट एयरवेज को मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ चर्गो एयरलाइंस का पुरस्कार मिला। श्रोता मित्र, आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का हालचाल का अंक अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम पे अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गजल नंदिता चक्रवर्ती के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे गजल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन राग ललित।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन, राग ललित। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर

0: किया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी

0: नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की

0: रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जाँच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Adha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
4: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
6: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
7: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
3: हैं? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing the security review

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन अल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को ये इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वो जराइम और मनुष्यात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदामात के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेठवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा 3 लाइब्रेरियां और

0: प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 16 और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने अवाम से माशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक को फरोग देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशउसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: लोग नज़दीकी मसाजिद में ईद उल अजहा की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीज़ा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू ना होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी ना होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। DGP राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 30वीं रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। SSP सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूबा के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोद गलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात अवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे।

0: सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है
1: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में रेलवे विद्युत और सड़क निर्माण से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

0: रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव से संबंधित बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में चल रहे भूमि सुधार को और विस्तार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम होगा।
2: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लिए रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों के इंडोर चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
2: बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी।
0: कैबिनेट ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले के लिए राज्य उच्च पथ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर 3,740 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम कोसी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले 14 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पत्थरघट, पाटलिपुत्र, खैलाट, पैकुंडपुर, गुरारू, पालीगंज, सुपौल, गोपालपुर, गोपालगंज, एकमा, चंडी, पैरिया और साहेबपुर कमाल प्रखंडों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इन पर आरोप पत्र गठित करने के साथ ही इनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है।
3: 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बंद करें अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सिविल सर्जन और डीपीएम की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा होगी।

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को व्यापक क्षति हुई है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: जमुई की एक अदालत ने गढ़ी थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 अन्य दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पटना की ATS अदालत ने जाली भारतीय नोट की तस्करी में 6 आरोपियों

0: को दोषी करार दिया है। 3 जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में 10,882 युवाओं को नौकरियां मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चुन्नू लाल यादव को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गया के गुरुआ बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यापारी को गोली मारकर 35 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन चौक के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर बेगूसराय के कुरहा ढाला के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के थूसर पंचायत के चकला पैयार में 3 दिन से आतंक फैला रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने मार डाला। तेंदुए के हमले में 3 लोग भी घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रैयती भूमि के लिए नई नीति, बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम ने दिया तोहफा, राज्य कर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, SIR कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हमारे वैभव सिक्सर किंग, आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केवटी के पीडीओ के 6 ठिकानों पर EOU का छापा। आज अखबार ने लिखा है, नए मानक से स्कूलों में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के 2 चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांच

0: रक्षक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: जफर हुसैन कव्वाल और साथी की आवाज़ में आप इस नात को समाप्त फरमा रहे थे, और बकौल अल्लामा इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, यानी अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है उसके मुनासबत से अगर हम उसके अहकाम को माने, उसके रसूल की पैरवी करें, तो यकीनन तमाम लोगों का भला होगा। सामीन, ईद उल अज़हा के मुनासबत से हम तमाम लोग इस बात से आगाह हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा जोई हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। इसमें हम देखते हैं कि अलामती तौर पे हम तमाम लोग कुर्बानी करते हैं, और ये चूँकि ज़ुलहिज का महीना भी है, इसमें अरकान हज भी अदा किया जाता है, और ये हज के दिनों में से एक है। हम तमाम लोग पे अल्लाह ताला ने कुर्बानी एक अलामती तौर पे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत हमें अता किया। यकीनन हम इसको जानते हैं और इसके फ़वाद के मुतालिक भी हम समझते हैं। ये न सिर्फ के कुर्बानी का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसके ज़रिए उन तमाम चीज़ों की जानिब भी निशानदेही की है जो हुकूक़ इंसानी के लिए अहम और ज़रूरी तसव्वुर किए जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में गम, खुशी, रंज, राहत, मामलात के साथ साथ वो तमाम चीज़ें भी आती हैं जो इंसान जिससे दिल बर्दाश्ता हो जाता है, किसी के साथ उसके मामलात होते हैं, कोई हसद का मामला होता है, कोई शर का मामला होता है, गर्ज़ ये कि उन तमाम बुराइयों से भी हमें आज के दिन इस अहद को करना ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक साफ़ कर लें और खालिस इबादते इलाही में मशगूल हों और उसके बताए हुए रास्तों पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आइए सामीन, ईद उल अज़हा के ही इस मुबारक मौके पे मज़ीद गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं, ईद उल अज़हा का ये जो पैगाम है, और इसमें नूरुस्सलाम से मोहम्मद आलम की गुफ्तगू है जो हम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं।
1: सामीन आदाब, ईद उल अज़हा का पैगाम। इस मुनासबत से आज हमारे यहाँ मदऊ है मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मौलाना नूरुस्सलाम नदवी साहब। उनसे हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और उनसे मुखातब हैं खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान गिरामी का स्टूडियो में इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं, और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी में बहुत सारे जानवर पेश किए जाते हैं, तो कुर्बानी का असल मकसद क्या है और कुर्बानी क्यों की जाती है, आप इस पर रोशनी डाल दें।
2: कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला का तकर्रुब और उसकी खुशनुदी हासिल करना है। ईद उल अज़हा के दिन पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हैं और जानवरों की कुर्बानी पेश करके इस बात का सबूत पेश करते हैं कि मेरा जीना और मरना, खाना और पीना सब अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए है। कुर्बानी का हकीकी मकसद यही है कि अल्लाह की मोहब्बत में इंसान अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, वही ईमानी जज्बा और कैफियत हमारे अंदर भी पैदा हो जाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर था। कुर्बानी का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसको अगर मुआशरती नुक्ते नज़र से देखें

0: कि जो आमदनी आती है, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, गांव में, देहात में, गरीब मोहताज, वो लोग जो जानवर पालते हैं और जानवर को बेच करके उनको जानवर की रकम मिलती है। फिर वो लोग जो महंगे होने के वजह से उन्हें गोश्त फराहम नहीं होता है, कुर्बानी के बरकत से हर जानवर के अंदर एक हिस्सा उनका मुतय्यन है, तो एक हिस्सा उनको मिल जाता है जो आम दिनों के अंदर मुमकिन नहीं। फिर उसके खाल और चर्से वगैरह की जो रकम होती है, उसकी भी कीमत पूरे के पूरे तौर पर गरीबों ही में तकसीम की जाती है। इसके अलावा जानवर का चारा, ये जो गरीब बेचते हैं तो उनको फायदा होता है, और उसको परवरिश करना, पालने पोसने की जिम्मेदारी भी उनको रहती है। तो कुल मिलाकर के ये समझा जाता है कि इसके जरिया से मालदारों की रकम इस उन्वान से गरीबों तक कई शक्ल में पहुंचती है और गरीबों का कई शक्ल में फायदा होता है। तो इसके जरिया से जो इस्लाम ने कुर्बानी का जो मकसद है, कुर्बा की मदद करना, तो दूसरे जराये से इसका सारा का सारा फायदा गरीब और मोहताजों तक ही पहुंचता है।
1: पहुंचता है।
0: अब रही बात ये कि ये कहा जाता है कि कुर्बानी का जानवर है और खास लोग इसको कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये कुर्बानी ये आज से नहीं है, बल्कि किताबों के अंदर आया है, कुरान करीम में भी आया है कि दुनिया में जितनी भी कौमें, हर कौम के यहाँ कुर्बानी किसी ना किसी शक्ल में रही है। नाम कहीं बलिदान है, कहीं भेंट है, लेकिन ये शक्ल बदलती रहती है, लेकिन सबके यहाँ कुछ ना कुछ ये इस जज्बे से और इस उन्वान से ये रही है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुर्बानी की और क्या क्या शक्लें और कौमों के यहाँ कैसे राज रही है? आप इस पे कुछ रोशनी डाल दें।
2: देखिए, कुर्बानी की तारीख बहुत पुरानी और कदीम है। हजरते आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल की कुर्बानी का जिक्र तौरात और इंजील के अलावा कुरान पाक के अंदर
0: गोया कि
2: मौजूद है।
0: पहले इंसान से,
2: जी
0: जो पहले इंसान आदम है, उन्हीं की औलाद से डायरेक्ट जो है ऐसे
2: बिल्कुल,
0: इसका आगाज हो रहा है।
2: जी
0: जी
2: जी
0: जी
2: जी जी और अभी आपने कहा कि कुर्बानी का वजूद किसी न किसी शक्ल में हर नबी और रसूल के ज़माने में मिलता है,
0: जी हर कौमों की यहाँ मिले।
2: और शायद ही कोई ऐसी कौम हो जहाँ इसका रिवाज किसी शक्ल सूरत में मौजूद न हो। जानवर को ज़बह करके किसी ऊंची जगह पर या पहाड़ पर रख दिया जाता था ज़माने कदीम में, और आसमान से आग आती थी और उस कुर्बानी को जलाकर खाकिस्तर कर देती थी। ये इस बात की अलामत समझी जाती थी कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। और हाबील और काबिल ने जो कुर्बानी दी थी वो कुछ इसी अंदाज की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। अरब ममालिक में लोग जो कुर्बानी देते थे उसका तरीका ये होता था कि लोग कुर्बानी के जानवर को बैतुल्लाह के सामने लाकर रख देते थे और उसका खून जो है उसकी दीवार पर पोत देते थे, लगा देते थे।
0: ये इस्लाम से पहले का
2: जी,
0: वाक्य
2: इस्लाम
0: है।
2: से पहले का वाकया है। लेकिन जब इस्लाम आया तो बताया कि कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है बल्कि इसका तकवा पहुंचता है। वह कि कुर्बानी का जो गोश्त और खून वहां ला के रख देते थे, कुरान करीम ने इस बात की नफी की कि भाई इससे आपका कुर्बानी का असल मकसद जो है वो हासिल नहीं होता है, इसलिए कि कुर्बानी नाम है तकवे का और दिल के जज्बे का। इस्लाम में कुर्बानी की बुनियाद हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाकये से होती है, जो बहुत
0: जी
2: मशहूर और मकबूल वाकया है और हर मुसलमान इस वाकये को जानता है, और बकरीद के मौके पर इस वाकये को बयान भी किया जाता है। एक हदीस में आया कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? माआज़ाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसकी याद में ये कुर्बानी की जाती है। जब इस्लाम आया और पुराने जमाने में जो कुर्बानी की शक्ल थी और उसके अंदर जो गलत रस्म और रिवाज थे, तो इस्लाम ने उस गलत रस्म और रिवाज को दूर किया और जो सही थे उसको बाकी रखा, और इस्लाम ने बतलाया कि कुर्बानी महज अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए की जाए। और कुर्बानी के इस मकसद से ये होता है कि इंसान के अंदर जो है वो हमदर्दी का और खैरखाही का जज्बा भी पैदा
0: ये
2: होता है।
0: बिल्कुल आपने जो अभी रोशनी डाली है, बिल्कुल ये दुरुस्त है। کہ ابھی جو موجودہ قربانی ہے اور اسلام میں جو ابھی قربانی

0: का जो रिवाज है और जो दस्तूर चला रहा है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3,000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम और उनके जो बेटे हजरत इस्माइल थे उन्हीं से इसका आगाज हुआ है।
1: बिल्कुल
0: और उस वाकया का पस मंजर यही है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम को बुढ़ापे में एकलौती औलाद हुई, उसको वो बहुत चाहते थे, तो अल्लाह ने इम्तिहान के तौर पर उन्हें आजमाया कि हमसे ज्यादा मोहब्बत है कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। तो उनको ख्वाब में जब दिखलाया तो उनके बेटे और वो दोनों तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म पर हम हर कुछ निछावर करने को तैयार हैं। तो ये अदा अल्लाह को पसंद आई और उसी को, यानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम के उसी वाकया को आज तक अल्लाह ने राइज फरमा दिया
1: बिल्कुल
0: है, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
1: सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम
1: वसल्लम
0: ने भी जारी फरमाया कि हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम की सुन्नत है जो आज तक जारी है और कयामत तक ये जारी रहेगा। तो ये आगाज ये बहुत कदीम है। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो ये बाप ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम्हारा जज्बा क्या है। उन्हें ये चीज ने सामान नहीं चाहिए, उन्हें गोश्त नहीं चाहिए, बल्कि वो तो तकवा और जज्बे को देखना चाहता है। हर इंसान के अंदर जब तक ईसार का, कुर्बानी का जज्बा नहीं
1: बिल्कुल
0: रहेगा, दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर
1: नहीं हो
0: सकता।
1: सकता।
0: एक शख्स के अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, अपने आराम को कुर्बानी, सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक नहीं है, मिजाज की कुर्बानी, नफ्स की
1: नफ्स की
0: कुर्बानी,
1: कुर्बानी,
0: शौक की कुर्बानी और जो हमारी
1: ख्वाहिशात की
0: महबूब तय
1: कुर्बानी।
0: ख्वाहिशात है जो हम चाहते हैं उसको निछावर करने की कुर्बानी, जब ये हर तरह की कुर्बानी किसी इंसान के अंदर जमा होती है तभी जाके उसको बड़ा मकाम मिलता है। अगर कोई शख्स सिर्फ आराम करता रहे और अपने आराम को कुर्बानी करे तो कोई बड़े मकासद को हासिल नहीं कर सकता। अगर एक माँ बाप अपने ख्वाहिशात को, अपने आराम को कुर्बान नहीं करे तो कभी भी अपने औलाद की सही तरबियत और परवरिश नहीं कर सकते हैं। तो माँ बाप के अंदर अपने ख्वाहिशात को, जज्बात को निछावर करने का जज्बा होता है जिस वालदैन के अंदर, उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक इंसान के अंदर अपने मुल्क के लिए मर मिटने का जब तक जज्बा नहीं होगा वो मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता है। तो ये जज्बा सिर्फ कुर्बानी के जानवर तक मुनहसिर नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स, आराम, मिजाज और सबको जब तक निछावर करने का जज्बा नहीं होगा वो समाज के लिए मुफीद
1: नहीं होगा।
0: नहीं हो सकता है। तो ये कुर्बानी का जज्बा जानवर से आगे बढ़ करके इन तमाम चीजों को अपने अंदर समोए
1: समेट
0: हुआ
1: लेता
0: समोए
1: बिल्कुल।
0: हुआ। तो आप मजीद इस पे आप कुछ रोशनी डाल दें कि और हमें किस तरह के जज्बात को अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए ताकि कुर्बानी का जो आम मकसूद है और आम जज्बा जो है वो हमारे अंदर बेदार हो।
1: बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इस पर अभी रोशनी डाली। देखिए, कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसका कोई बदल नहीं है, और कुर्बानी की रूह इखलास, लिलाहियत और तकवा है। इसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में ईसार और कुर्बानी का जज्बा बेदार होता है,
0: बेशक
1: और ये ऐसा जज्बा है जिसके ज़रिए एक दूसरे के तई ताउन, हमदर्दी, खैरख्वाही का जज्बा पैदा होता है। इंसानी समाजी और इज्तमाही ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए मदद करने और ताउन करने का भी जज्बा इससे पैदा होता है। दूसरों की ज़रूरतों और तकलीफ़ों को समझना, उसको दूर करने की कोशिश करना, और
0: जो
1: ये
0: आदमी
1: सब
0: खुद
1: का
0: अपने मिजाज का बन जाता है कि
1: जी
0: सिर्फ अपना फायदा देखता है, सेल्फिश हो जाता है, वो समाज के लिए मुफीद नहीं होता।
1: मुफीद नहीं होता।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल।
0: फरमाया।
1: तो इसमें इस मकसद को भी ध्यान में रखा गया है।

0: लिए कर रहे हैं, बल्कि इस मौके के अंदर जो जज्बा है कि हमारे अंदर ईसार का जज्बा हो, निछावर होने का जज्बा हो, अपने शौक को, मिजाज को बड़े मकसद के लिए कुर्बान करने का जज्बा हो, एक तालिबे इल्म जब तक अपने शौक को, अपने आराम को कुर्बान नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसको बड़ी मंजिल और बड़ा मकाम नहीं मिल सकता है। तो ये मिजाज कुर्बानी बनाता है, और इसी के साथ साथ ये भी पैगाम देता है कि इस मौके पर हम गरीबों मोहताजों को का भी ख्याल रखें। और उसमें बाज़ाब्ता तीन हिस्सा में एक हिस्सा गरीबों का मुतय्यन किया गया है, एक हिस्सा दोस्त अहबाब का है, एक अपने लिए है। और इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि अपनी कुर्बानी में हमारे किसी अमल से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ न पहुंचे, कि हम अपनी इबादत में किसी के तकलीफ का जरिया बने। इसलिए सफाई सुथराई और अपने दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखे, और गरीबों का खास तौर पे ख्याल रखे। कुर्बानी का यही सादा सा पैगाम है, आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है, आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है, नफ्स की कुर्बानी का ईद अजहा नाम है। तो इसी के साथ साथ आज की गुफ्तगू को हम यहाँ इख्तिताम पज़ीर करना चाहते हैं। आज के इस अहम तरीन गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थे जनाब डॉक्टर मौलाना नूरुस्सलाम नदवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए।
1: आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी।
0: तो इसी के साथ आज के ये मजलिस यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। हमारे मेहमान खसूसी थे जनाब डॉक्टर नूरुस्सलाम नदवी साहब, और उनसे मुखातब थे ये हकीर खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। शुक्रिया।
2: इज़हार क़ुरबानी की अहमियत और मानवियत के मौजू पर नूरुस्सलाम से मोहम्मद आलम की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे थे। आइए अब अगली पेशकश में मुलाहिज़ा फरमाइए मोहम्मद सदर आलम से उनके नातिया कलाम।
3: अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात पाक पेश खिदमत है, समाप्त फरमाएँ।

या रसूल अल्लाह। एक दूसरी नात पाक पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं।

जश्न क्यों ना मनाए हम उनका, जश्न क्यों ना मनाए हम उनका, जिनके सदके में दुनिया बनी है, जिनके सदके में दुनिया बनी है। मांग लो जिस कदर मांग पाओ, मांग लो जिस कदर मांग पाओ, हर जगह उन्हीं की जलवा गरी है,

0: साथ साथ जमाना का क्या गमे, हादसात जमाना का क्या गमे, दिल में उल्फत नबी की बसी है, दिल में उल्फत नबी की बसी है। अपना ईमां बचा सदर आलम, अपना ईमां बचा सदर आलम, रहजनों से ये दुनिया भरी है, रहजनों से ये दुनिया भरी है।
1: सामिन, आप मोहम्मद सदर आलम से उनके नातिया कलाम समाप्त फरमा रहे थे और अगली पेशकश में लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए जमील मेहंदी और साथियों की आवाज़ में ये नार।

जमील मेहंदी और साथियों की आवाज़ में सामीन आप इस नात को समाप्त फरमा रहे थे, और इसी के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ। ईद उल अज़हा की एक बार फिर से पुरखलुस मुबारकबाद आप तमाम को कबूल फरमाएं। हमारा सफ़र यहीं तमाम करने की इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए धुरंधर द रिवेंज फिल्म से जैस्मिन संदलास और सरताज सतिंदर सरताज की आवाज़, शाश्वत सचदेव का संगीत और सतिंदर सरताज के गीत।

कार्यक्रम रसमंजरी में अगला गाना सुनिए, वसुंधरा दास के शान और लॉय मेंडोसा की आवाज़ में। फिल्म है कल हो ना हो, संगीत शंकर एहसान लॉय का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की आवाज में। फिल्म है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। संगीत शाश्वत सचदेव का है और गीतकार हैं राजशेखर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद

0: ओ मेरे भाई।
1: कार्यक्रम रसमंजरी में अगला गाना सुनिए, प्रिंस फिल्म से आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत सचिन गुप्ता का है और गीतकार हैं समीर।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश एयरलिफ्ट फिल्म से अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत अंकित तिवारी का है और गीतकार हैं कुमार।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गजल और भजन नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं गजल नंदिता नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में अब सुनिए भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गजल और भजन नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अलिसा चिनॉय, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में बंटी और बबली फिल्म के इस गीत को। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और गीतकार हैं गुलजार।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म है लहू के दो रंग। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार हैं समीर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म है ताल, संगीत ए आर रहमान का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

Oh,

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है संस्कार गीत, लेकिन एक अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: हेलो
7: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: निर्गुण पदों में जीवात्मा को दुल्हन और परमात्मा को प्रियतम का प्रतीक माना गया है। इस दृष्टि से यह भवसागर नैहर और परमात्मा का घर ससुराल समझा गया है। जीवात्मा रूपी वधु प्रियतम परमात्मा से मिलने जा रही है, इसलिए परिजन लोग आंसू न बहाएं। 4 कहारों ने मिलकर अर्थी रूपी डोली उठाई है, आप भी अपना कंधा उसे दे दें। चंदन काठ की सेज सजी है, उस पर दुल्हन को सुलाना होगा, यही संसार की रीत है। मन में ज्ञान की ज्योति जगाकर इस व्याकुलता को मिटाना होगा। इस भाव पर आधारित एक निर्गुण पद प्रस्तुत है।

काया रूपी नगरी में माया मोह विषय वासनाओं का बाजार लगा है। लोग इसकी चमक दमक में स्वयं को भूल बैठे हैं। इस बाजार में अनमोल वस्तुएं बिकती हैं और उनका मोल भाव कर रहे हैं संसारी लोग।

सोने का महल है जिसमें मोतियों की झालर लगी है। प्रियतम दूसरी ओर करवट लेकर सो रहा है। समय रहते अपने प्रियतम से मिल लो, अन्यथा ये सुखद संयोग नहीं मिलेगा।

जीवन की गति बड़ी विचित्र है। किसी ने जन्म दिया, किसी ने भाग्य लिखा, और कौन संसार से मुक्त कराने को आ गया? राम ने जन्म दिया, ब्रह्मा ने भाग्य लिखा, और यमराज संसार से मुक्ति दिलाने आ गए। एक लंबी यात्रा पर चलते चलते मुड़कर अपने शरीर रूपी मंदिर को देखा, जिससे बड़ा सुख मिला, किंतु वही सोने का मंदिर आग में जल रहा है। माता पिता रो रहे हैं, प्राण विहीन शरीर को जड़ी बूटी देने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु अब मानव शरीर कहाँ मिलने वाला है।

एक दिन संसार रूपी नैहर छूट जाएगा और बाबुल से नाता टूट जाएगा। परमात्मा प्रियतम का जब बुलावा आएगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा। भले ही परिजन सखी सहेलियां जार जार रोएं, तुम्हें ले जाने के लिए हरे बांस की डोली बनाई जाएगी, तुम्हें पांच रंग की चादर उढ़ाई जाएगी, चार कहार मिलकर तुम्हारी डोली उठाएंगे और इस नश्वर संसार से संबंध टूट जाएगा। ईश्वर के देश में तुम्हारे धर्म अधर्म का, तुम्हारी नेकी बदी का लेखा जोखा होगा। इसलिए इस संसार में जब तक रहना है अपना जन्म संवार लो, राम नाम के साबुन से अपने पापों के दाग छुड़ा लो, सतगुरु के साथ नेह लगा लो, क्योंकि हरि का गुणगान एक अमृत बूटी है।

एक कुम्हार माटी को रच रच कर घड़ा बनाता है, उसे दुलार से संवारता है, प्रेम से निहारता है। घड़ा देखकर गर्व होता है तो वह मन ही मन मुस्कुराता है और बहुत सुख पाता है। अचानक पूर्व दिशा में बदली घिरती है, रिमझिम वर्षा होती है और मिट्टी का घड़ा गलकर मिट्टी में मिल जाता है। कुम्हारिन घड़े को याद करके रोती है। कुम्हार कहता है, हे कुम्हारिन, चुप रहो, मैं दूसरा घड़ा बना दूंगा। बनना और मिटना तो संसार की रीत है। यहाँ शरीर को घड़े का प्रतीक माना गया है। एक घड़े के नष्ट होने पर दूसरे घड़े का बनाना एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करने का पर्याय है।

पांच नदियां मानव का पंचभूत शरीर हैं, जिसमें एक प्राण रूपी धारा बहती है। उस धारा के बीच कमल खिला है। फूल चुनने के लिए बगीचे में जाने पर डाली में साड़ी का छोर अटक गया। सतगुरु के सिवा इसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। यहाँ फूल चुनना संसार के अच्छे पदार्थों का चुनना है। उपवन संसार का प्रतीक है। शरीर रूपी साड़ी विषय वासना रूपी डाल में फंस गई है। सतगुरु की कृपा से फूलों से चंगेरी भर ली है, अर्थात अच्छे कार्यों से जीवन को सफल बना लिया है। सतगुरु ही हैं जो सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर परलोक ले जा सकते हैं। सखियों से आंचल छूट गया, यानी अपने सगे संबंधियों से ममता त्याग कर संसार से विदाई हो गई।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संस्कार गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत। नारी जगत कार्यक्रम

वाली सभी प्यारी बहनों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जब दो देश या किसी देश के अंदर लोग आपस में लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं, इससे देश में अशांति फैल जाती है, तब वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे समय में शांति सेना वहाँ जाकर हालात को सुधारने की कोशिश करती है। अधिकतर शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें कई देश शामिल होते हैं जो मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। भारत भी इस शांति सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई देशों में अपने सैनिक भेज चुका है। बहनों, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखने वाले शांति सैनिकों के योगदान और बलिदान को सम्मान देना है। यह दिवस उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने शांति स्थापित करने के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए। बहनों, शांति सेना जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। वे लोगों को भोजन, पानी और दवाइयाँ उपलब्ध भी कराने में सहायता करते हैं। कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के कारण लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे समय में शांति सेना उनके लिए राहत शिविर भी लगाती है और इसके साथ वे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान देती है। बहनों, शांति सेना का उद्देश्य है केवल लड़ाई रोकना नहीं बल्कि लोगों को सुरक्षित और खुशहाल जीवन देना है ताकि दुनिया को भी हम बेहतर बना सके। और आइए बहनों, सुनते हैं कुछ संदेश।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बहनों, मासिक धर्म महिलाओं और किशोरियों के जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शरीर को स्वस्थ होने का संकेत भी है, इसलिए इसे छिपाने या शर्म की बात नहीं मानना चाहिए। लेकिन आज भी कई जगहों पर बहनों मासिक धर्म से जुड़ी गलत धारणाएं और भेदभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि मासिक धर्म स्वच्छता को एक मानवाधिकार माना जाता है। मानवाधिकार का मतलब बहनों कि हर व्यक्ति को सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिलना। इसी तरह से हर लड़की और हर महिला को यह अधिकार है कि वे अपने मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान रख सके और बिना किसी डर और शर्म के जी सके। इसी विषय पर हमने कुछ महिलाओं से बात की। आज एक इस बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य है जो अपने ये विचार दे रही है, सुनते हैं उनके विचार।
4: स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। इसका मेन पर्पस यही है कि माहवारी से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ना। और हम अपने विद्यालय में हर तरह से बच्चों के लिए व्यवस्था रखते हैं आपातकालीन स्थिति में भी, और मंथली मैं लास्ट सैटरडे को इसके लिए प्रोग्राम रखती हूँ, जिसमें मैं बच्चों को और गाँव से मैं डॉक्टर को भी बुलाती हूँ और जो इसके विशेषज्ञ है उनसे भी बच्चियों को जानकारी दिलाती हूँ। और उन्हें इसके अलावा मैं प्रति माह जो है दो पैड लड़कियों को वितरण करती हूँ ताकि वो हाइजीन का पालन करें और साफ सुथरे रहें और उन्हें सुरक्षित रहें। और ये बात सही है कि पीरियड को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं जो कि है कि वो लोग खुलकर बात नहीं करती हैं। और इसका क्या होता है कि विद्यालय पर भी असर पड़ता है। जैसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं आई विद्यालय, तो बोलती है मम्मी नहीं आने दी या ऐसी अवस्था में या बीमार थे। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत ही मिथ्या प्रचलन है। ये एक स्वस्थ होने की बल्कि सूचक है, जो प्रत्येक महिलाओं में जो होता है ये सामान्य बात है। और ये मुख्यतः प्रजनन से जुड़ा हुआ है आगे, और इसलिए मैं गार्जियन लोगों को भी पेरेंट्स मीटिंग रखती हूँ तो उसमें बताती हूँ कि अपने बेटियों को के बारे में बताएं और उनसे उनको जो विद्यालय है वो हर काम कर सकती हैं। और ये सब की पूजा में नहीं सुना है या रहाना नहीं है, ये सब मिथ जो है उनको ना ध्यान देके

0: साफ सफाई से रहें।
1: बहनों, आपको बता दें कि मासिक धर्म स्वच्छता हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मासिक धर्म यानी पीरियड्स और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया जाता है। लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड, साफ कपड़े या अन्य सुरक्षित साधनों के उपयोग करने की जानकारी भी दी जाती है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि समय समय पर पैड बदलना और साफ सफाई क्यों जरूरी है। इस पर हमने एक किशोरी से बात की है, सुनते हैं वो क्या कहती हैं।
2: मेरा नाम ऋषिका माथुर है और मैं जेडी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा हूँ और आज 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग को स्कूल की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि हम लोग को हर महीने सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है और डस्टबिन और क्लीन और वॉशरूम क्लीन प्रोवाइड किया जाता है और इंफॉर्मेशन देने के लिए भी बाहर से लोगों को बुलाया जाता है।
1: बहनों, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता न रखने से संक्रमण और कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए साफ पानी, स्वच्छ शौचालय और सही स्वच्छता सामग्री का भी होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाओं को इन सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। इस दिवस का उद्देश्य ऐसी समस्याओं की ओर समाज और सरकार का ध्यान इस ओर करना है। बहनों, आज भी कई जगहों पर लड़कियों को पीरियड के समय स्कूल नहीं जाने दिया जाता या फिर खुद ही असुविधा के कारण स्कूल छोड़ देती है। यह उनकी शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर साफ शौचालय और स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराना भी जरूरी है। बहनों, इसके लिए तो हर वर्ग को आगे आना चाहिए। इस पर पुरुष वर्ग क्या कहते हैं, जो एक एक टीचर है, उनसे सुनते हैं उनके विचार।
3: मैं डॉक्टर आशुतोष गिरी बोल रहा हूँ, मैं जेडी गर्ल्स हाई स्कूल में फिजिक्स का टीचर हूँ। आज हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मना रहे हैं 28 मई को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बात करने से लोग कतराते हैं जनरली, लेकिन एक स्कूल में शिक्षक होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम सही ज्ञान को अपनाएं और रूढ़िवादिता को तोड़ें। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ना ही यह कोई शर्म या अपवित्रता की बात है। यह ईश्वर द्वारा बनाई गई पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है। यह होने का मतलब ही होता है कि महिला स्वस्थ है। पुरुषों के रूप में हमें महिलाओं को सहयोग करने की आवश्यकता है, उनसे भेदभाव नहीं करने की आवश्यकता है। उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने की जरूरत है ताकि वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल न करें, हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है। ज्यादा से ज्यादा आराम देने की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर में उनको तनाव होता है, पेट दर्द होता है, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो हमें उन्हें देखभाल करने की जरूरत होती है, उनका ध्यान रखना होता है, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होता है और उनके काम में हाथ बटाना होता है।
1: इसके अलावा बहनों, मासिक धर्म को लेकर समाज में खुलकर बात करना भी जरूरी है। परिवार, स्कूल को चाहिए कि वे बच्चों को सही जानकारी दें ताकि वे इसे सही तरीके से समझ सके। तो बहनों, मासिक धर्म स्वच्छता हर महिला का बुनियादी अधिकार है। ये केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान, समानता और गरिमा से भी जुड़ा है। जब हर लड़की महिला को यह अधिकार मिलेगा तभी हम एक स्वस्थ और समान समाज की ओर हम बढ़ सकेंगे। वैसे भी कई सामाजिक संस्था इस पर काम कर रही हैं, सामाजिक संस्था और यूनिसेफ के द्वारा भी समय समय पर इसके बारे में जागरूक करती रहती है। आइए सुनते हैं इस बारे में वे क्या कह रहे हैं।
4: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन के साथ जो एक दिवसीय कार्यशाला चल रहा है वो मुख्यतः विद्यालयों में और KGBV हॉस्टल्स में पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता और खास करके माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। यूनिसेफ का एक मैंडेट है कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं और हॉस्टल्स हैं वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बने रहें, उसके लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं खास करके पेयजल, साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, यूरिनल की व्यवस्था और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए

0: स्कूल्स में खासकर के लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और माहवारी स्वच्छता अनुकूल की शौचालय विद्यालय में बिहार शिक्षा परियोजना के साथ मिलकर क्लोजली काम करता आ रहा है और आगे भी इसके ऊपर काम करेंगे। जब हम लोग माहवारी स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये 2014 में शुरू किया गया है और पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर माहवारी स्वच्छता से संबंधित जुड़े हुए जो मिथक है, जो टैबूज है, उसको तोड़ने के लिए, वो चुप्पी तोड़ने के लिए 28 मई को इस दिवस मनाया जाता है। इसमें ना सिर्फ लड़कियां हैं, लड़कों को भी हम लोग कैसे जागरूक करें और माहवारी के बारे में सही जानकारी उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचाएं, ताकि इसके अराउंड जो टैबूज है, जो मिथक फैला हुआ है, उसको हम लोग तोड़ सके। महत्वपूर्ण विषय यही है कि हम लोग अपने लड़कियों तक पहुंचे, उनको सही जानकारी मिले वाटर सैनिटेशन हाइजीन और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन लेकर, और सारे बच्चियां इनको अच्छे से मैनेज करें, हॉस्टल्स में सारे व्यवस्थाएं बच्चियों के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चों को अपने विद्या प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह कोई बाधा ना हो।
1: बहनों, बिहार सरकार ने भी ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि कोई भी लड़की महामारी के कारण स्कूल ना छोड़े। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कूली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता अनुदान को 150 से बढ़ाकर 300 प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जिससे वे बेहतर तरीके से माहवारी का प्रबंधन कर सके। कम कीमत पर सैनिटरी नैपकिन जन औषधि केंद्रों और चुनिंदा जिलों में जीविका समूह के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने MHM पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी शुरू किया है और कई स्कूलों में जरूरतमंद छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए पैड बैंक का अभिनव पहल भी अपनाई है। तो बिहार अभी भी एक अहम मोड़ पर खड़ा है और बदलाव दिख भी रहा है। और आइए बहनों, अब हम सुनते हैं कथा पाठ। शीर्षक है डिनर सेट, कहानीकार है ममता मेहरोत्रा।
2: मैं आपको अपनी एक कहानी डिनर सेट सुनाने जा रही हूं। अजी सुनती हो, राकेश ने ऑफिस से आकर कहा। क्या है, सुमित्रा बोली, पर वह थोड़ी चिड़ी हुई थी। दिन भर की किचकिच शाम तक उसके स्वभाव में झलकने लगती थी। सुबह 5 बजे जो उठती थी तो फिर रात के 11 बजे ही पलंग नसीब होता था। बावर्ची, धोबिन, मेहरी बनते बनते कब वह माँ और पत्नी के पायदान से थोड़ा नीचे गिर गई, इसका उसको इस जिंदगी में ज्ञान भी नहीं हुआ। अरे बढ़िया खुशखबरी है, इस बार साहब ने मेरे काम से खुश होकर मुझे 3,000 रुपए का बोनस दिया है। सच? एकदम से सुमित्रा के चेहरे पर खुशी आ गई। इस तरह की खुशखबरी के लिए तो वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हाँ, राकेश उसको थोड़ा छिड़ते हुए बोला, तुम तो ऐसे खुश हो जैसे पहली बार इतनी बड़ी रकम देख रही हो। पहली बार ही देख रही हूं, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह से कहाँ कुछ एक बच भी पाता है, सुमित्रा थोड़ा सा रूखे अंदाज में बोली। पर राकेश इस समय काफी खुश था और अपने मूड को खराब नहीं करना चाहता था। बोलो मेरी जान, क्या करोगी इसका, राकेश थोड़ा शेखी से बोला। अरे करना क्या है, इसको सुनीता के लिए बैंक में जोड़ देंगे, उसकी शादी में काम आएंगे। सुनीता? अरे वह तो अभी बच्ची है, मुश्किल से 2 साल की भी नहीं हुई और अभी से तुम्हें उसकी शादी की फिक्र है। तुम औरतों से तो इसलिए बात करने का मन नहीं करता, जब देखो किचकिच, कोई खुशी की बात भी तुम्हारे साथ बांटना चाहो तो मुंह बन जाता है। अरे क्या बेटी की शादी की चिंता सिर्फ तुमको है, मेरी वह कुछ नहीं है, सारा मूड चौपट कर दिया। सोचा था तुम कितनी खुश होगी, हम लोग अपने घर के लिए कुछ नया लेकर आएंगे और एक तुम हो। तौबा, थोड़ा बनावटी गुस्से से राकेश बोला। अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए, फिर थोड़ा मनाते हुए बोली। अच्छा चलिए बोलिए क्या करना है। थोड़ी देर तो राकेश अनमना रहा, फिर बोला, अच्छा चलो एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। सुमित्रा फटाक से 2 कप चाय बना लाई। थोड़ी भूमिका बांधते हुए राकेश बोला, सुमी, हाँ अपने कप देख रही हो, शादी के बाद से कोई

नया खरीद ही नहीं पाए। मेरा कितना मन है कि हमारे घर में भी एक अच्छा सा डिनर सेट हो। कितना अच्छा लगेगा कि जब कोई आएगा तो उन बर्तनों में उनको खिलाएंगे। डिनर सेट? वह चौंक कर बोली, आप ठीक तो हैं? अरे अपनी कौन सी इतनी बड़ी औकात है कि कोई राजा महाराजा हमारे घर आएंगे। अरे हम ठहरे साधारण लोग, जिसमें खाते हैं उसी में खिलाएंगे। अब छोड़िए भी। अच्छा, आज पहली बार अपनी कमाई पर मैंने कुछ खरीदने की इच्छा जाहिर की है तो तुम मुंह बना रही हो। तुम्हारे घर चलाने में तो मैं नहीं बोलता। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हमारे पास भी एक अच्छा सा डिनर सेट हो? उस दिन दुकान में तो तुम उलट पुलट कर देख रही थी। अब बेटी से ज्यादा सुमित्रा का मन अपने लिए लालच करने लगा। हाँ, मन तो उसका भी था कि गृहस्थी में एक चमचमाता डिनर सेट उसके पास हो। स्टील के बर्तनों को देख देख कर तो उसका मन ऊब गया था। दोनों पति पत्नी मन बनाकर मार्केट गए और जांच परख कर एक बढ़िया सा डिनर सेट खरीद लाए। दोनों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शायद छोटा सा ही सही, पर जब कोई सांसारिक सपना पूरा होता है तो एक जीत का एहसास कराता है और अपनी श्रेष्ठता बतलाता है। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ घटित हुआ। अपना कीमती संग्रह सुमित्रा ने उठाकर बक्से में बंद कर दिया। राकेश ने थोड़ा सा प्रतिवाद भी किया, पर इतने सुंदर डिनर सेट को इस्तेमाल करने का उसका मन ना था। कोई उचित मौके पर इसको निकालेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और वह बक्से में बंद हो गया। बेटी सुनीता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर एक बार राकेश ने स्मरण दिलाया तो सुमित्रा ने बात टाल दी। अरे कौन से ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनको दिखाकर हमें कुछ हासिल हो जाएगा? रागनी मौसी तो देखकर चिढ़ेंगी ही कि कहाँ से हमारे पास इतना पैसा आया जो हमने उसे खरीदा। और अगर कोई ईर्ष्यावश ये बात उन्होंने आपकी माँ को कह दी तब तो जैसे भाड़ा ही फूट जाएगा। यहाँ हम लोग पेट काट काट कर जोड़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम यहाँ ऐश में जी रहे हैं। काहे अपनी जिंदगी हम लोग खराब करें? छोड़ो, कोई बढ़िया मौका देख कर निकालेंगे। दिन बीतते गए और कोई बढ़िया मौका उन लोगों की जिंदगी में आ ही ना पाया। या अगर ऐसा कहें, उनको इतना बढ़िया कोई मौका ना लगा जिसके लिए वह डिनर सेट निकालने की जहमत उठाते। एक दिन राकेश ऑफिस से लौट कर आया। उसको काफी बेचैनी हो रही थी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से इसकी शिकायत की। आप लेट जाइए, आपको एसिडिटी होगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। मैं आपको अजवाइन पानी देती हूँ, चिंता मत करिए। घरेलू इलाज हो गया, पर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। रात तक जब कोई फायदा ना हुआ तो सुमित्रा उसको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने उसको देखते ही अपने यहाँ तुरंत भर्ती कर लिया। सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, पर देखने से तो हल्का हार्ट अटैक प्रतीत होता है। यह सुनकर तो जैसे सुमित्रा के नीचे से धरती खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो डॉक्टर रिपोर्ट्स के विषय में बात कर रहे थे। मेजर हार्ट अटैक था। 72 घंटे के निरीक्षण की जरूरत है। देखो, ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर हिम्मत रखकर सुमित्रा उठी। इस समय उससे ज्यादा उसके पति को उसकी जरूरत थी। उसको हिम्मत से काम लेना होगा। और वह पूरी तन्मयता से सेवा में जुट गई। पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 72 घंटे बीतते ना बीतते राकेश की हालत और बिगड़ती गई और इसी बीच उसे एक के बाद एक दो और हार्ट अटैक पड़े। तीसरा अटैक वह ना झेल पाया और उसका देहांत हो गया। सुमित्रा के ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया। इतना बड़ा सदमा वह कैसे झेल पाएगी? आज राकेश की 13वीं थी। सभी परिवार के लोग जुटे हुए थे। तभी सुमित्रा की छोटी बहन मीनू ने आकर सुमित्रा से कहा, दीदी मैं डिनर सेट निकाल ले रही हूँ, कुछ प्लेटें घट रही हैं। आज शायद डिनर सेट निकालने का मौका था। ऊपर कहीं राकेश क्या इसी मौके की तलाश में तो ना था? सुमित्रा सिर्फ और सिर्फ मौन स्वीकृति दे पाई। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद होगी। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जिंदगी को हर क्षण हमें आनंद और उल्लास के साथ जीना चाहिए, क्योंकि अगला क्षण हमारे हाथ में नहीं है। जब हम बहुत लंबे समय की
प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो अक्सर वो योजनाएं कहाँ पे टूट के बिखर जाती हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता।

0: इसलिए जीवन को एक आनंदोत्सव के साथ हम लोग को मनाते रहना चाहिए।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी कहानी डिनर सेट। कहानीकार थी ममता मेहरोत्रा। उम्मीद करते हैं बहनों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बहनों, धार्मिक असल की यात्रा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये हमें शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा देती है। हम यात्रा के दौरान नए लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं और एक नया अनुभव प्राप्त होता है। इससे हमारा ज्ञान और समझ भी बढ़ती है। लेकिन बहनों, हमें यात्रा के दौरान कुछ सावधानियां भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे। जब भी आप यात्रा पर निकल रही हो तो उसकी पूरी तैयारी कर लें। जिस स्थान पर जाना है उसके बारे में जानकारी रखें, जैसे कि रास्ता, मौसम, वहाँ के नियम और साथ साथ अपना जरूरी सामान जैसे कि पहचान पत्र, पैसे, दवाइयाँ और कपड़े। अगर वहाँ ठंडी जगह है तो आप गर्म कपड़े भी जरूर अपने पास रखें। अगर भीड़ वाली जगह है तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखिए। यात्रा के दौरान साफ सफाई का भी ध्यान जरूर रखें। धार्मिक स्थल पवित्र स्थान होते हैं, इसलिए वहाँ गंदगी ना फैलाएं। कूड़ा हमेशा कूड़ादान में डालिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। मैंने इससे न केवल जगह साफ रहती है बल्कि दूसरों को भी अच्छा संदेश मिलता है। भीड़ वाले स्थानों में सावधानी से चलें और धक्का मुक्की से भी बचें। तो बहनों, सावधानी सुविधाएं से ही की गई यात्रा हमें शांति के साथ एक अच्छा अनुभव भी देती है। और बहनों, हम आपसे चर्चा करेंगे वीर सावरकर जी के बारे में। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, रचनात्मक लेखक, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता और समर्पित राष्ट्रवादी थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। किशोरावस्था में ही उन्होंने अभिनव भारत नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। वीर सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजी सरकार ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप के सेलूर जेल में काला पानी में भेज दिया गया। जेल में रहते उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा और देशभक्ति के विचार फैलाए। बहनों, सावरकर ने अपने विचारों और लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक किया और उनका जीवन देशभक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा याद किया जाएगा। और बहनों, आज है बकरीद, जिसे हम ईद उल अजहा भी कहते हैं। ये मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार प्रेम भाईचारे का पर्व है। ये त्यौहार हमें बलिदान और दूसरों की मदद करने की सीख भी देता है। बहनों, बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की भावना में की याद में मनाई जाती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का भी विशेष महत्व है। लोग दान करते हैं और खुशियां सबके साथ बांटते हैं। इससे समाज में प्रेम और मानव समानता बढ़ती है। बहनों, बकरीद हमें भाईचारा और एकता सिखाती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गले मिलते हैं और खुशी साझा करते हैं। आइए इसी खुशी को हम आपके साथ साझा करते हैं एक गीत सुनकर।

0: मैनू इस गीत के साथ अब दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया।

0: किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिव कुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। उद्योग जगत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, कृषि उद्योग में नवीनतम कृषि यंत्रों की उपयोगिता। वार्ताकार हैं मनीष कुमार।
2: आज के आधुनिकीकरण युग में कृषि उद्योग में बहुत सारी संभावनाएं हैं। छोटे छोटे नए कृषि यंत्रों को अपनाकर हम अपनी लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। पारंपरिक कृषि यंत्रों की अपेक्षा जिसकी कार्य क्षमता अधिक है, इन यंत्रों का उपयोग करके हम कम से कम समय में अपनी दक्षता को बढ़ाकर कृषि उद्योग से होने वाली आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं जानते हैं उन उपयोगी कृषि यंत्रों के बारे में। पैडल चलित आलू छिलाई यंत्र। पैडल चलित आलू छिलाई यंत्र छोटे उद्यमियों के लिए विकसित किया गया है। जहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं हो या कम हो, वहाँ पे छिद्रदार स्टेनलेस स्टील के ड्रम गोल घूमने के दौरान आलुओं के छिलके निकलते हैं और इसकी कार्यक्षमता 188 किलो प्रति घंटा है। हस्तचालित छिलाई यंत्र। यह एक बैच प्रकार का हस्तचालित उपकरण है जिसे किसी भी प्रकार के आलू का बाहरी छिलका उतारता है ताकि छिले आलू से अन्य प्रसंस्करण जैसे चिप्स आदि मूल्य संबंधित उत्पाद तैयार किए जा सकें। इसमें मुख्य ढांचा हत्था, घूमने वाला ड्रम तथा खांचा, पानी अंतर्गम, ऊपरी ढक्कन आदि लगाए गए हैं। इसमें 8 किलो के एक बैच छिलाई 8 मिनट में पूरी कर ली जाती है और इसकी कार्य क्षमता 30 से 32 किलो प्रति घंटा है। पैडल चलित आलू कटाई यंत्र। पैडल चल

आलू कटाई यंत्र छोटे उद्यमियों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली की आवश्यकता कम है। इसमें ढांचा पोषण इकाई स्टेनलेस स्टील की ब्रेड लगाई गई है और इसकी कार्य क्षमता 1880 किलो प्रति घंटा है। दाल मिल, यह 2 HP की 3-फेज विद्युत मोटर चलित इकाई है जो अरहर, काला चना, हरा चना तथा मसूर का छिलका निकालकर दाल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें कार्बन

है और इसकी कार्य क्षमता 100 किलो प्रति घंटा है। मानव एवं पावर चलित सफाई एवं श्रेणीकरण यंत्र, मतलब क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग यंत्र, यह एक पैडल अथवा हाफ एचपी का सिंगल फेज विद्युत मोटर चलित उपकरण है, जिससे धूल, मिट्टी, पत्थर, भूसा, चारा आदि अलग कर अनाज तथा दलहनों का श्रेणीकरण किया जा सकता है। इसमें मुख्य ढांचा हॉपर, भराई प्रणाली, छलनी बॉक्स, सफाई तथा श्रेणीकरण, छलनिया संचरण प्रणाली इकाई, सेंट्रीफ्यूगल, ब्लोअर, साइकिल लगाए गए हैं और इस मशीन की कार्य क्षमता 300 से 400 किलो प्रति घंटा है। आटा पृथक्करण यंत्र, यह एक एचपी की सिंगल फेज विद्युत मोटर चलित उपकरण है, जिससे पीसे गेहूं को दलिया, मैदा, सूजी तथा छोटे आटे में अलग अलग किया जा सकता है। यह पीसे हुए गेहूं, चना तथा सोया आटे के लिए उपयुक्त है और इसमें हॉपर, पृथक्करण प्रकोष्ठ, उपयुक्त छलनियाँ तथा निकासी द्वार सहित लगाए गए हैं और इस मशीन की कार्य क्षमता 80 से 120 किलो प्रति घंटा है। मक्का फोराई और छिलाई यंत्र, यह एक हाथ से चलाए जाने वाला यंत्र है, जिससे छिले हुए भुट्टे से मक्के के दाने निकाले जा सकते हैं। इस इकाई में कलई युक्त पाइप की अंदरूनी परिधि में 4 टेपर्ड फिन्स लगाए गए हैं। इकाई को बाएं हाथ तथा भुट्टे को दाएं हाथ में पकड़कर इकाई में डालकर घुमाया जाता है, जिससे दाने अलग किए जा सकते हैं। यह इकाई अष्टकोणीय डिजाइन में भी उपलब्ध है और इस छोटे से मशीन की कार्य क्षमता 18 से 22 किलो मक्का के दाने को अलग कर सकता है। मूंगफली अरनी फोराई यंत्र, यह एक हस्तचालित उपकरण है, जिससे मूंगफली तथा अरनी की फली से दाने अलग किए जाते हैं। इस इकाई में ढांचा, हत्था, दोलन, आर्म, मूंगफली तथा अरनी के लिए अलग अलग छलनियाँ हैं। मूंगफली को 5 किलो के समूह में अवतल तथा ढलवा लोहा सुयुक्त ढोलन आर्म के बीच में फोड़ा जाता है, ताकि फली से दाना अलग किया जा सके और इस मशीन की कार्य क्षमता 60 से 68 किलो प्रति घंटा है। महिला उद्यमी के लिए मूंगफली फोराई यंत्र, यह ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाया गया एक हस्तचालित उपकरण है, जो फली से दाने को फोड़ कर अलग करता है। इस उपकरण को चौकी पर बैठकर आसानी से महिलाओं द्वारा प्रचालित किया जाता है। इस इकाई में एक फ्रेम हैंडल तथा इधर उधर हिलने वाली छलनी होती है, जिसमें आयताकार छेद होता है। एक बार में 1.5 से 2 किलो फली तोड़ने के लिए इसमें डाली जाती है, जिसे अवतल तथा दोहन करने वाली लोहे, नायलून, सू लगी हुई थ्रेड के बीच फोड़ा जाता है और इसकी कार्य क्षमता 30 से 35 किलो प्रति घंटा है। हस्तचालित सोयाबीन छिलाई यंत्र, जिसको डिहलर भी बोलते हैं, यह एक हस्तचालित उपकरण है, जो सोयाबीन के दानों का छिलका निकालता है, ताकि भूसी रहित दाल प्राप्त किया जा सके। इसमें 2 समकेंद्री सिलेंडर, शक्ति संचरण प्रणाली तथा टूटे दाने हटाने के लिए क्रमशः ब्लोअर तथा छिद्रदार जाली ढांचा एवं हॉपर लगाया गया है। सोया दाने से छिलका घूमने वाले तथा स्थिर सिलेंडर के बीच डालकर निकाला जाता है और इसकी कार्य क्षमता 35 किलो प्रति घंटा है। पावर चलित सोयाबीन छिलाई यंत्र, यह एक एचपी की सिंगल फेज विद्युत मोटर चलित उपकरण है, जिससे 4 प्रक्रियाओं जैसे छिलका उतारना, टुकड़े करना, भूसी उड़ाना तथा पृथक्करण किया जा सकता है। इसमें 2 समकेंद्री सिलेंडर, बेल्ट तथा पुल्ली, शक्ति संचरण प्रणाली, ब्लोअर, हॉपर, मुख्य ढांचा तथा छिद्रदार जाली लगाया गया है। बाहरी तथा अंदरूनी सिलेंडर के अंतर स्थान को किनारे के स्क्रू से समायोजित किया जा सकता है और इसकी कार्य क्षमता 80 किलो प्रति घंटा है। अनाज छिलाई यंत्र, यह हाफ एचपी की 3 फेज विद्युत मोटर चलित उपकरण है, जिससे खुरदरे अनाजों से चोकर तथा दलहनों से खुरच कर छिलका निकाला जाता है। यह गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का से चोकर तथा दलहनों से छिलका निकालने के लिए उपयुक्त है। इसमें हॉपर, कार्बोनडम, पहिया, अवतल, चक्रवाती, पृथकाकार तथा संचरण प्रणाली लगाए गए हैं और इस मशीन की कार्य क्षमता 100 से 300 किलो प्रति घंटा है। कम लागत बहुउद्देशीय पिसाई यंत्र, यह एक एचपी का सिंगल फेज विद्युत मोटर चलित उपकरण है, जिससे अनाज, धनिया तथा दलहनों की बारीक मोटी पिसाई तथा दलहनों की दलाई की जाती है। इस इकाई के लिए 8 से 10% नमी वाले तेल मात्रा का अनाज सबसे उपयुक्त है। इसमें हॉपर, भराई,
समायु

योजक ऊर्ध्वाधर प्रणाली लगाई गई है। इसकी कार्यक्षमता 10 से 20 किलो प्रति घंटा है। सोयाबीन उष्मा प्रसंस्कृत इकाई, यह एक बैच प्रकार का उपकरण है जिससे सोया दाल के पोषकतारोधी तत्वों को दूर करने के लिए उसे गीला करने के बाद उष्मा प्रसंस्कृत किया जाता है। इसमें एक अंदरूनी एवं बाहरी सिलेंडर, एस्बेस्टास रस्सी, छिद्रदार पिंजरा, जाली, स्टैंड, उष्मारोधक तथा पानी निकास बाल्ब लगाया जाता है। चार छिद्रदार पिंजरों से 20 किलो सोया दाल का एक बैच 1 घंटे तक 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में रखा जाता है, जिसे बाद में हवा में सुखाकर पोषक तारोधी तत्व रहित दाल प्राप्त की जा सकती है। और इस मशीन की उष्मीय दक्षता 21 से 38% है। पोहा बनाने का मशीन, यह 1 HP की सिंगल फेज विद्युत चलित उपकरण है जिससे प्रसंस्कृत सोयाबीन, ज्वार, मक्का तथा चने को दबाकर तथा खींचकर पतले पोहे बनाए जाते हैं। इसमें 3 हल्के स्टील रोलर, मुख्य ढांचा, हॉपर, स्टैंड, एकत्र करने की ट्रे तथा शक्ति संचरण प्रणाली लगाए गए हैं। इसमें उष्मा प्रसंस्कृत 25 से 30% नमी वाले सोया दाल को सोलर के बीच दबाकर पोहा बनाया जाता है। पोहे का भंडारण 7 से 8% नमी की अवस्था में किया जाता है और इसकी कार्य क्षमता 20 किलो प्रति घंटा है। कुटीर स्तरीय सोया पनीर यंत्र, यह एक कुटीर स्तर का दूध तथा पनीर उत्पादन संयंत्र है जिसमें भाप बनाने की इकाई, पिसाई यंत्र, युक्त कुकर, दूध छानने की इकाई तथा पनीर दबाने का सांचा है। सोया दाल को 80 डिग्री सेल्सियस पर वायु रहित वातावरण में सोया दूध बनाने के लिए पीसा जाता है। सोया दूध को स्कंदित कर घोल को दबाकर पनीर बनाया जाता है और इसकी कार्यक्षमता दूध के लिए 30 किलो और पनीर के लिए 50 किलो प्रतिदिन है। सोया दूध छानने की इकाई, सोया दूध छानने की इकाई कुटीर स्तर पर सोया दूध पनीर संयंत्र के साथ प्रयोग करने हेतु विकसित की गई है। इस इकाई द्वारा गर्म सोया जल के घोल में घुले हुए कणों को अलग कर लिया जाता है और इस मशीन की कार्य क्षमता 60 लीटर दूध प्रति घंटा है। पनीर दबाने की सांचा, यह एक स्क्रू प्रकार का हस्त चलित उपकरण है जिससे स्कंदित सोया घोल से क्यूब आकार का पनीर दबाकर तैयार किया जाता है। इसमें एक ढांचा, चौकोर बॉक्स तथा स्क्रू पर चालित दबाने की प्लेट लगाई गई है और इसकी कार्य क्षमता 16 किलो प्रति घंटा है। घरेलू स्तरीय पनीर प्रेस, यह एक छोटा पनीर दबाने का यंत्र है जो घरेलू स्तर पर पनीर बनाने के लिए उपयुक्त है। इसमें स्क्रू प्रकार का प्रेस है तथा इसे हाथ से प्रचारित कर जल को दबाकर बाहर निकालने तथा पनीर को दबाने का काम किया जाता है और इसकी कार्य क्षमता 2 किलो प्रति घंटा है। क्लीनर कम ग्रेडर मशीन, दलहन, तेलहन एवं सभी प्रकार के अनाजों की सफाई एवं ग्रेडिंग करता है। सभी प्रकार के पाउडरों जैसे आटा, बेसन, सत्तू को चालता है। सभी प्रकार के सामानों के लिए अलग अलग साइज की जाली बदलने की सुविधा है। 1 हॉर्स पावर की मोटर या वायल इंजन द्वारा ये चलता है और इसकी उत्पादन क्षमता 150 किलो से 200 किलो प्रति घंटा है। हस्तचलित पापर प्रेस, उत्पादन प्रति घंटा प्रति मशीन 150 पापड़, इसकी दक्षता है। पुरानी पद्धति से उत्पादन 4 गुना अधिक है। चलाने में भी सुविधाजनक है। महिलाओं भी इसे आसानी से चला सकती हैं और इसमें बिजली की आवश्यकता भी नहीं है। एक मशीन को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है और कम पूंजी में भी यह उद्योग चलाया जा सकता है। इस मशीन में पापड़ गोल बनते हैं और पतला से पतला पापड़ भी हम बना सकते हैं। पत्ता प्लेट बनाने की मशीन, यह मशीन चलाने में बहुत सुविधाजनक है और महिलाएं भी इसको आसानी से चला सकती हैं। मशीन को पैर से चला सकते हैं। डाई को गर्म करने के लिए 220 वोल्ट बिजली की जरूरत होती है। बिजली नहीं रहने पर किरासन तेल द्वारा चालित ब्लो लैंप से गर्म भी कर सकते हैं। एक मशीन को चलाने के लिए एक व्यक्ति की ही जरूरत होती है और कम पूंजी में भी इस उद्योग को चलाया जा सकता है। इस मशीन द्वारा उत्पादित पत्ता प्लेट ताप द्वारा निर्माण से शुद्ध एवं स्वास्थ्य कारक है और कीटाणु रहित है। देखने में अच्छी लगती है।
और लीक प्रूफ है। शादी विवाह उत्सव एवं पार्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत सस्ता होता है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है थाली प्लेट का वो 1200 पीस प्रतिदिन है, और थाली चार खाना का जो हम लोग यूज करते हैं वो 1200 पीस प्रतिदिन है, और कटोरी भी 2500।

0: पीस प्रतिदिन हम लोग बना सकते हैं, और नाश्ता का प्लेट साइज 5.5 इंच का 2500 पीस प्रतिदिन, और नाश्ता प्लेट साइज 7.5 इंच का 1900 प्लेट प्रतिदिन हम इससे बना सकते हैं। हस्तचालित दाल निकालने का यंत्र, ये सभी दालों के छिलके उतारने एवं दो टुकड़े करती हैं। 98% से 100% दाल का छिलका उतारना एवं उसको दो टुकड़ा में ये करता है। शुद्ध दाल की उपलब्धि 78% से 80% है, और इसमें बिजली की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इसे हाथ से चला सकते हैं, महिलाएं भी इसे आसानी से चला सकती है। दाल में नेचुरल नमक रहता है, रंग पॉलिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसकी कार्य क्षमता चना मटर सोयाबीन खेसारी एवं बोकला का दाल जो है 50 से 60 किलो प्रति घंटा एक बार में हम लोग कर सकते हैं। अरहर दाल को 40 से 50 किलो प्रति घंटा एक बार में, मसूर दाल को 35 से 40 किलो प्रति घंटा दो बार में करके कर सकते हैं, और मूंग एवं उड़द दाल 25 से 30 किलो प्रति घंटा तीन बार में करके इससे काम हम ले सकते हैं। बहुउद्देशीय बिजली चलित जूस निकालने का यंत्र, इस मशीन से हम सभी प्रकार के फलों का जूस कम समय में निकाल सकते हैं, जैसे संतरा मौसमी अनार अनानास आम तरबूज, और इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 लीटर प्रति घंटा है, और इस मशीन में 1/2 HP की मोटर लगा हुआ है, और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारे पार्ट्स स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से सभी कृषक उद्यमी भाई बहन छोटे से बड़े जरूरत के हिसाब से नवीनतम कृषि यंत्रों को अपनाकर कृषि उद्योग को स्थापित कर अपनी पहचान बना सकते हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं।
1: उद्योग जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, कृषि उद्योग में नवीनतम कृषि यंत्रों की उपयोगिता। वार्ताकार थे मनीष कुमार। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है देशगान।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: FIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इमरान अजीज मिलन को, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

0: FIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लीजिए, सुनिए सुनिधि चौहान को। फिल्म का नाम है दिल परदेसी हो गया। गीतकार हैं सावन कुमार, संगीतकार उषा खन्ना।

0: लीजिए सुनिए, जुबीन को फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ बासीपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप फिल्म गैंगस्टर में सुन रहे थे जुबीन को। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम एक प्रगतिशील प्रणाली है। भारत के कई विश्वविद्यालय और संस्थान, साथ ही विश्व भर के कई संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में इस प्रणाली को लागू किया है। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

0: पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज मनाई जा रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज अदा की गई है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में भी आज सुबह खास नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने की घटना हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखला इम्तहान CUET 2026 के इम्तहान की तरमीम शुदा तारीख और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। NTA के मुताबिक इम्तहान अब 31 मई, 6 और 7 जून को लिया जाएगा। आज होने वाला इम्तहान ईद उल अजहा के सबब दूसरी मुकर्रा तारीख में लिया जाएगा। NTA ने बताया कि एतवार को इम्तहान देने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और NTA की वेबसाइट cuet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। 6 और 7 जून को इम्तहान देने वाले बाकी उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि CBSE के 12वीं के इम्तहान की कापियों की जांच के अमल में कुछ कमियां आने के बाद अब दोबारा जाँच शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में CBSE अफसरान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में जनाब प्रधान ने कहा कि अफसरान यह यकीनी बनाएंगे कि सभी तालिब इल्मों की शिकायतों को हल किया जाए और सभी सतह पर जवाबदेही तय की जाए। बेज़ाब्ते की जिम्मेदारी लेते हुए वजीर तालीम ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और मुनासिब हल निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM के तरक्की याफ्ता निज़ाम है। भारत की कई यूनिवर्सिटी और इदारे, साथ ही दुनिया के कई इदारे इस निज़ाम को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब CBSE ने मुल्क में इस निज़ाम को लागू किया है। जनाब प्रधान ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ स्कैन किए गए सफात की जांच पहली बार CBSE के जरिए OSM सिस्टम से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात शेयर करेंगे। यह इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां एडिशन होगा। इसका नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट

और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ईसार और कुर्बानी का अजीम त्यौहार ईद उल अज़हा आज पूरे मुल्क में अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इस मौके पर ईदगाहों, मसाजिद और मुख्तलिफ मकाम पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। इधर बकरीद के

0: राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी नमाज ईद उल अजहा अदा की गई, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। इधर बकरीद के पेश नज़र पूरी रियासत में तहफ्फुज़ के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी खास नज़र रखी जा रही है। बकरीद के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रियासत के गवर्नर सैयद अता हसनैन और वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आवाम को मुबारकबाद दी है। रियासत के शुमाल और मशरकी हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली गिरने और झालाबारी के वाकयात में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 और मुंगेर, भागलपुर, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण में 1-1 शख्स की मौत हो गई। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार करते हुए महलुकीन के वर्षा को 4-4 लाख रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने के वाकया पेश आया। इतला मिलते ही मुकामी रेल इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे नुमाइंदा ने बताया है कि इस वाकये में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। महकमे मौसमियात ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 42.2 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी सीएसबीओ ग्रेड टू के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस

0: बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह

0: राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगही में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारसिनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में

0: भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है,

0: लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है,
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी ये बात तो है,
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी अजी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन

0: किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
0: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है।
6: हा?
7: मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह।
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।

0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो

0: ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय!
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
2: भारत माता की जय!
3: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय

0: प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती कैसी हैं आप?
2: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
1: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
2: हाँ ये बात भी है,
1: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना
2: है, बस सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
1: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
2: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
1: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
2: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर

0: करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते ही हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं हैं, या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में।
1: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी
0: बिल्कुल
1: बारे में हम जानकारी देंगे और साथ ही मुझे कुछ कहना है इसमें। हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
0: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी हुई
1: फंस
0: थी
1: गई थी।
0: बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ, खेलती चली जा रही हूँ, और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं। फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है।
1: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा यानी बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी टिप्स है आज की।
0: हाँ, ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो वाईफाई होता है ना, वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अज़हा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं जी।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है, ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान के ख़त्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान या ज़कात देना इस त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते
1: जी
0: हैं।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो भी अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है.
0: सच में.
1: वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल,
1: काम.
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है. कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनको जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है. और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, नहीं जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की.
0: बिल्कुल. और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया. उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है.
0: बिल्कुल. और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है. उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की.
0: बिल्कुल. कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस तरह रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही है, कितनी अच्छी बात है. और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए. वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए.
1: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है. अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है.
0: बिल्कुल. देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
1: जी
0: तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो
1: देखिए.
0: उसके लिए भी उन्होंने कितना किया. तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह से. और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है. उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है. उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है.
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है.
0: बिल्कुल. और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है.
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है.
0: बिल्कुल. और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित.
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है.
1: बिल्कुल.
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला

0: जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे। पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल,
0: रहा
1: वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ
0: आए
1: ये तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: 100 झूठ
0: बोलना
1: बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूँ, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि
0: एक
1: वो और
0: हमारे
1: आगे कर सकें।
0: जी एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है।

0: मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपने जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की
0: सचमुच
1: बात।
0: दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्ममूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची
1: बिल्कुल
0: और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें,
1: बिल्कुल
0: जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भैया इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
1: जी।
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते
0: कभी
1: कि
0: कभी ऐसा
1: जी
0: भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए
0: जी
1: उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाए और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है, तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती हैं, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे
1: बिल्कुल
0: मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय
1: बहुत
0: माध्यम
1: ज्यादा
0: है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का

0: दलदल ये बन जाता है, और इसमें व्यक्ति धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन
0: जी
1: गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही
0: यानी
1: बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जो श्रोता है हमारे वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर
0: और
1: पड़ता
0: ये
1: है।
0: जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
1: तो
0: उन्हें
1: भी
0: कुछ पॉइंट्स
1: हाँ
0: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
1: हाँ जी कोई
0: सॉरी
1: नहीं।
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पालें, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले,
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले,
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: आपकी सीख के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम न रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलू मान जाओ ना,
0: देखे सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
2: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है, लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है, कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
3: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
2: जी।
3: और साथ ही एक श्रोता जो लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
2: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
3: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
2: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
3: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
2: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
3: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
2: धीमी हो गई,
3: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
2: जी।
3: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
2: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया।

0: लीजिए, कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड
1: कोई आपके
0: कम
1: घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: एक
1: रहे
0: ही
1: हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना, जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल इन्हें आड़ा रखें, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथ

0: आरती लिखते हैं, आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
1: अरे
0: बात है
1: वाह,
0: तो पढ़ाई
1: देखा,
0: हो
1: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: जी
1: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
0: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
1: बिल्कुल
0: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल, उसका ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
0: जी, और
1: क्योंकि
0: अभी
1: अति हर चीज के लिए भी
0: अब
1: बुरी होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: अति सर्वथ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
1: बिल्कुल
0: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
1: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो रहती है आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, तब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ, आप जी, क्या जी, करते हैं, खेत में काम करते
1: जी,
0: हैं?
1: जी, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इस समय गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर में हम लगाने लगे
0: काम।

0: कहाँ
1: तो
0: करते
1: हमारे
0: हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम? खांजीपीर उदयपुर से, झीलो की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ। कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गंज शहीद।

0: की दरगाह पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है।
1: जी आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
0: जी
1: जब
0: जी
1: आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
0: जी
1: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
0: मैडम, त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। करते हैं क्या?
1: जी
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: वाह, तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी भारतीय के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही हैं, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापिस रेत के कणों से और धूल से भर

0: जाता है, क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इतनी देर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है,
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
0: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
0: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप,
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में यही का आप।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल
1: भाषा,
0: उसको आप जूट के उसे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29 और 48 सेकेंड हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं, सभा का आरंभ में लीजिए, सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्यार भरा अभिनंदन। आकाशवाणी के इस खास मंच पर, जहां सपनों को मिलती है उड़ान और विचारों को मिलता है सम्मान, आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूं करिश्मा। लेकर आई हूं जोश, उमंग और नई ऊर्जा का खजाना। दोस्तों, युववाणी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की धड़कन है। उनकी सोच, उनकी आवाज और उनके उज्जवल भविष्य का आईना है।
0: यहाँ हम आज बात करेंगे वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे की, साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, और साथ ही मनाएंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर विनायक दामोदर सावरकर। और हमारा खास सेगमेंट तो आप भूल ही गए, आज है थ्रोबैक थर्सडे, और साथ ही जानेंगे कुछ रोचक तथ्य।
1: तो तैयार हो जाइए कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने के लिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में होगा ज्ञान का संगम, प्रेरणा का उत्सव और मनोरंजन का शानदार सफर। पर हम ये सफर शुरू करने से पहले सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा ट्रैक, क्योंकि तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, अभी हमने सुना फिल्म कुछ तो है से के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत ट्रैक। कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक प्रेरक पंक्ति के साथ। क्यों अंकिता?
1: बिल्कुल, नारी शक्ति का रूप महान, उससे रोशन है जहान। हिम्मत साहस जिसकी पहचान, हर मुश्किल करती आसान।
0: घर आंगन से लेकर गगन तक बढ़ती जाती हर एक कदम तक, ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास उसके जीवन का है प्रकाश।
1: अब नारी कमजोर नहीं, किसी से भी कमतर नहीं, अपने सपनों की उड़ान भरे, हर बाधा को पार करे।
0: शिक्षा उसका सबसे बड़ा हथियार, जिससे बदले रहा संसार। जब नारी को सम्मान मिलेगा, देश

0: तभी महान बनेगा।
1: आओ मिलकर करें ये काम, नारी का बढ़ाए मान सम्मान, हर बेटी को मिले अधिकार, तभी होगा सशक्त संसार। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चक दे इंडिया से हेमा देसाई की आवाज़ में ये गाना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के विशेष टॉपिक पर।
1: बिल्कुल अंकिता, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन।
0: बिल्कुल, आज भी कई जगहों पर पीरियड्स को लेकर झिझक, शर्म और गलत धारणाएं मौजूद हैं, जबकि हर महिलाओं के शरीर में एक सामान्य

0: और प्राकृतिक प्रक्रिया है ये।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो हमें यह बात समझना चाहिए कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर के स्वस्थ होने का संकेत है।
0: करिश्मा, कई किशोरियां पहली बार पीरियड्स आने पर घबरा जाती हैं, उन्हें लगता है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या ये सही है?
1: नहीं, ये सही तो नहीं है, बट क्योंकि उन्हें पहले से इस बारे में आइडिया नहीं होता है। जैसे बच्चे हैं, अब वो मतलब ग्रोइंग एज में है, अचानक से उन्हें ये पता होता है, उन्हें आइडिया नहीं होता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए माता पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को समय रहते सही जानकारी दें।
0: अब बात करते हैं स्वच्छता की। पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, और सैनिटरी पैड, टेम्पोन, मेस्ट्रुअल कप, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे समय समय पर बदलना चाहिए। लंबे समय तक एक ही पैड इस्तेमाल करने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
0: और संक्रमण का खतरा बढ़ने से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और बहुत तरह का इन्फेक्शन जो है वो लंबे समय तक रह सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आमतौर पर हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलना बेहतर माना जाता है, खासकर ज़्यादा फ्लो होने पर।
1: और हाथों की सफाई, मतलब लाइक हैंड वॉश भी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चेंज करते हैं तो आप अपने हैंड को प्रॉपर वॉश करिए, और पैड बदलने से पहले और बाद में अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, है ना अंकिता?
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए जानते हैं प्रिंसिपल सुजाता जी से उनके विचार।
2: गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल बोल रही हूँ, तो सुजाता। इसका मेन पर्पस यही है कि माहवारी से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ना, और हम अपने विद्यालय में हर तरह से बच्चों के लिए व्यवस्था रखते हैं, आपातकालीन स्थिति में भी। और मंथली मैं सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को इसके लिए प्रोग्राम रखती हूँ, जिसमें मैं बच्चों को और गाँव से मैं डॉक्टर को भी बुलाती हूँ, और जो इसके विशेषज्ञ है उनसे भी बच्चियों को जानकारी दिलाती हूँ। और उन्हें इसके अलावा मैं प्रति माह जो है दो दो पैड प्रति लड़कियों को वितरण करती हूँ, ताकि वो हाइजीन का पालन करें और साफ सुथरे रहें और उन्हें सुरक्षित रहे। और ये बात सही है कि पीरियड को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं, जो कि है कि वो लोग खुलकर बात नहीं करती हैं। और इसका क्या होता है कि विद्यालय पर भी असर पड़ता है। जैसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं आई विद्यालय, तो बोलती है मम्मी नहीं आने दी, या ऐसी अवस्था में, या बीमार थे। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत ही मिथ्या प्रचलन है। ये एक स्वस्थ होने की बल्कि सूचक है, जो महिलाओं में जो होता है ये सामान्य बात है, और ये मुख्यतः प्रजनन से जुड़ा हुआ है आगे। और इसलिए मैं गार्जियन लोगों को भी पेरेंट्स मीटिंग रखती हूँ, तो उसमें बताती हूँ कि अपने बेटियों को के बारे में बताएं, और उनसे उनको जो विद्यालय है वो हर काम कर सकती हैं, और ये सब की पूजा में नहीं सुना है या नहाना नहीं है, ये सब मिथ जो है उनको ना ध्यान देके और साफ सफाई से रहे।
0: तो अभी आपने सुना प्रिंसिपल सुजाता जी से कि उनकी क्या क्या राय हैं, क्या क्या गलत धारणाएं हैं जो हमें नहीं फॉलो करने चाहिए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़की कपड़े इस्तेमाल करती हैं। अगर कपड़ा इस्तेमाल किया जाए तो उसे अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए।
1: बिल्कुल, गीला या ठीक, मतलब ठीक से साफ न किया गया कपड़ा संक्रमण का कारण बन सकता है।
0: करिश्मा, पीरियड्स को लेकर समाज में कई मिथक भी हैं, जैसे मंदिर नहीं जाना, अचार नहीं छूना या खेलकूद से दूर रहना।
1: हाँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ऐसी कोई बातों का मतलब कोई ठोस आधार नहीं है अभी तक। पीरियड्स के दौरान लड़की सामान्य जीवन जी सकती है।
0: बल्कि हेल्दी एक्सरसाइज, योग से शरीर जो है उसको आराम मिल सकता है और दर्द भी कम हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंकिता, और साथ ही संतुलित भोजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे आयरन की चीज़ें, हरी सब्जियाँ, फल और पर्याप्त पानी। पानी तो इम्पोर्टेंट ऐसे भी है, और उस समय में थोड़ा और हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना चाहिए।
0: कई बार लड़कियां पीरियड्स के दर्द को छुपाती रहती हैं, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या पीरियड्स अनियमित ढंग से हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है।
0: स्कूल में भी पीरियड्स और स्वच्छता को खुलकर शिक्षक ने जानकारी देनी चाहिए, और लड़कियों को आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब इस चीज़

0: छुपा के रखें या हम अपने दर्द को एक्सप्रेस ना कर पाएं।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे क्या मतलब, ये सारी लड़कियों का ये है कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, इस बारे में लड़कों को भी इस विषय के बारे में जानकारी देना चाहिए ताकि वे भी संवेदनशील और सहयोगी बन सके। लाइक घर में ही अगर पता हो तो हेल्प मिल जाती है ना, अगर आप पता ही बताओगे ही नहीं तो वो आपको समझेंगे कैसे, हेल्प कैसे करेंगे। तो लड़कों को भी इस मामले में थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए।
0: बहुत सही बात। जब समाज खुलकर बात करेगा तभी शर्म और डर खत्म होगा। तो चलिए सुनते हैं टीचर आशुतोष जी से इस बारे में उनकी राय।
2: मैं डॉक्टर आशुतोष गिरी बोल रहा हूँ। मैं जेडी गर्ल्स हाई स्कूल में फिजिक्स का टीचर हूँ। आज हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मना रहे हैं 28 मई को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बात करने से लोग कतराते हैं जनरली, लेकिन एक स्कूल में शिक्षक होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम सही ज्ञान को अपनाएं और रूढ़िवादिता को तोड़ें। मातृ धर्म कोई बीमारी नहीं है, ना ही यह कोई शर्म या अपवित्रता की बात है। यह ईश्वर द्वारा बनाई गई पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है। यह होने का मतलब ही होता है कि महिला स्वस्थ है। पुरुषों के रूप में हमें महिलाओं को सहयोग करने की आवश्यकता है, उनसे भेदभाव नहीं करने की आवश्यकता है, उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने की जरूरत है ताकि वो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल न करें, हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है। ज्यादा से ज्यादा आराम देने की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर में उनको तनाव होता है, पेट दर्द होता है, तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो हमें उन्हें देखभाल करने की जरूरत होती है, उनका ध्यान रखना होता है, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होता है और उनके काम में हाथ बटाना होता है।
1: तो अभी हमने जाना टीचर आशुतोष जी से इस बारे में उनकी राय। और ये बहुत ही मतलब आजकल संस्थाएं और सरकारें भी मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रहे हैं, सस्ते सैनिटरी पैड अवेलेबल कराए जा रहे हैं क्यों अंकिता?
0: हाँ, और ये बहुत सकारात्मक कदम है क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य हर महिला का अधिकार है। आप जानते हैं रश्मिका से उनके क्या विचार हैं?
3: मेरा नाम ऋषिका माथुर है और मैं जेडी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा हूँ। और आज 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग को स्कूल की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि हम लोग को हर महीने सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है और डस्टबिन और क्लीन और वॉशरूम क्लीन प्रोवाइड किया जाता है, और इंफॉर्मेशन देने के लिए भी बाहर से लोगों को बुलाया जाता है।
1: तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पीरियड्स को छुपाने या शर्माने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप शर्माइए मत इस चीज को लेकर, समझिए और इसे स्वीकार करिए।
0: बिल्कुल, जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।
1: तो आइए हम सब मिलकर मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं।
0: इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे अगले गाने के लिए नेक्स्ट ट्रैक।

0: तो दोस्तों, अभी हमने सुना फिल्म पैडमैन से मीका सिंह की आवाज में ये गीत।
1: नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, स्वस्थ महिला से ही बनेगा स्वस्थ हिंदुस्तान। तो आइए दोस्तों, अब जो विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ।
0: जी बिल्कुल अंकिता, और हर साल 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा सके।
1: इस दिवस की शुरुआत 1987 में हुई थी, कोस्टारिका में आयोजित वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना चाहिए। तो हर साल 28 मई को यह दिन मनाया जाता है।
0: तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को हम ये बताएंगे कि ये दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि अक्सर महिलाएं परिवार की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपने हेल्थ को एकदम इग्नोर कर देती हैं, है ना अंकिता? और यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिला का स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि दुनिया भर में अनेक महिलाएं अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं।
1: बिल्कुल, और इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा। कई महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उचित चिकित्सा सुविधा नहीं पाती हैं। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता, मासिक धर्म, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक, सुरक्षित मातृत्व जैसे कई बातों पर जागरूकता बढ़ाना है। और लैंगिक असमानताएं, कई जगह महिलाओं के स्वास्थ्य को पुरुष जितनी प्राथमिकता नहीं मिलती। साथ ही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि तनाव, अवसाद, घरेलू दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और स्वास्थ्य अधिकार, अब औरतों को भी तो पता होना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है। हर महिला का सम्मानजनक और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए।
0: ये बिल्कुल सही बात आपने कही अंकिता, और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे जागरूकता की कमी, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, सामाजिक संकोच, आर्थिक समस्याएं, समय की कमी, पहले परिवार बाद में खुद वाली सोच। कई महिलाएं दर्द, कमजोरी, अनियमित पीरियड्स या मानसिक तनाव को सामान्य समझकर चुप रह जाती है।
1: और बहुत बार तो उनके फैमिली को भी फर्क नहीं पड़ता है कि दर्द के लिए बोल रही हैं या खाना समय पे खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। लोगों को उनका खाना मिल जा रहा है, पर महिला के स्वास्थ्य की फिक्र कौन कर रहा है?
0: उन्हें तो बस लगता है कि बोल रही है, होते रहता है काम कर

0: करिए, होता है, इट्स नॉर्मल, बट उनका हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों?
1: सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज महिलाओं में कौन-कौन से आम स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं? बहुत बहुत सारी आम समस्याएं हैं, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी जिससे जोड़ों में दर्द हो जा रहा है, थायराइड, वजन बढ़ रहा है, पीसीओएस, मोटापा, डायबिटीज़ और खासकर हाई ब्लड प्रेशर, विटामिन डी की कमी हो जा रही है और खासकर तनाव होने से माइग्रेन पकड़ ले रहा है, दिन रात एक ही पोस्चर में काम करने से पीठ में दर्द हो जा रहा है। इसमें से कई सारी समस्याएं जीवन शैली से जुड़ी हैं।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा अंकिता, क्योंकि डेली लाइफस्टाइल तो इफेक्ट करता है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और वैसे अनीमिया जो है वो भारत में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और अनीमिया मतलब, मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता शायद नहीं हो, तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर में खून या होमोग्लोबिन की कमी।
1: तो चलिए, बातें तो हमारी होती रहेंगी, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले सुन ले हम अपना अगला ट्रैक।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ की आवाज़ में फिल्म निर्जा से ये प्यारा सा गाना। तो करिश्मा, अभी हम बात कर रहे थे, जैसा कि आप बता रही थी कि लोग औरतों में अनीमिया का दिक्कत देखा जा रहा है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इससे बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे कि पालक, चुकंदर, गुड़, अनार, दाल, हरी सब्जियाँ, किशमिश, और डॉक्टर की सलाह से आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए।
1: बिल्कुल अंकिता। और अब बात करते हैं मासिक धर्म स्वास्थ्य की। आज भी इस विषय पर खुलकर बात तो नहीं होती, क्योंकि पर मैं बताना चाहूँगी कि पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई शर्म की बात नहीं।
0: जरूर, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें स्वच्छता हो, नियमित पैड बदले, दर्द होने पर जांच कराए, अनियमित पीरियड्स को नज़रअंदाज ना करें। आज महिलाएं कई भूमिका निभाती हैं, घर, परिवार, नौकरी, बच्चों की देखभाल। क्या इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है?
1: महिलाएं अक्सर एक साथ कई जिम्मेदारी निभाती है, जैसे हमने अपने घर में भी देखा है। ऐसे में तो तनाव, चिंता, थकान और भावनात्मक दबाव बढ़ना स्वाभाविक ही है ना? और लेकिन समस्या तब होती है जब महिला अपनी भावनाओं को दबाकर सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करती हैं। तो मेरा ये पर्सनली कहना है कि महिलाएं भी आराम से अपने घर में बात करें, तभी तो घर के लोग भी समझेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम है ना
0: बिल्कुल
1: अंकिता?
0: बिल्कुल, लगातार उदासी होना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर रोना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा थकान, किसी काम में मन ना लगना, अकेलापन महसूस होना और अत्यधिक चिंता करना, इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी कदम है कि हर औरत को अपने लिए समय निकालना ही चाहिए। लाइक सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ टाइम बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लें।
0: और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ज़रूर बात करें, योग करें, ध्यान करें। वैसे भी योगा मेडिटेशन हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है,
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और हो
1: और
0: सके तो सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल। और ज़रूरत हो तो काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है।
0: करिश्मा जी, अब बात करते हैं पोषण की। महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य में संतुलित आहार कितना ज़रूरी है?
1: अंकिता जी, पोषण महिलाओं के स्वास्थ्य की बुनियाद है। अक्सर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन अपने खाने को नज़रअंदाज कर देती है।
0: महिलाओं के शरीर को अलग अलग जीवन चरणों पर, जैसे कि किशोरावस्था, प्रजनन आयु, गर्भावस्था और रजनी वृत्ति में अलग पोषण की ज़रूरत होती है। तो खाने में हमें दूध, दही, दाल, हरी सब्जी, मौसमी फल, मेवे, बीज आदि ये सब ज़रूर ऐड करना चाहिए।
1: और महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट चलना, हल्का योग, स्ट्रेचिंग, ये सब भी करना जरूरी है। मुझे तो लगता है करना चाहिए नहीं, करना जरूरी है।
0: और यहाँ तो लोग अक्सर सेल्फ केयर को स्वार्थ समझ लेते हैं
1: बट ऐसा
0: कि वो
1: है
0: अपने
1: नहीं।
0: लिए समय निकाल रही है, परिवार पे ध्यान नहीं दे रही है, पर ऐसा नहीं होता है। आदमी उसी समय में से अपने लिए भी वक्त निकाल सकता है।
1: बिल्कुल, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है और खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वास्थ्य निवेश है।
0: श्रोताओं, आज हमने जाना कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का विषय नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और जागरूकता का भी विषय है।
1: इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ हमें यही याद दिलाता है कि हर महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार है।
0: तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं अगला ट्रैक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना फिल्म मैरी कॉम से विशाल डाडलानी की आवाज में ये ट्रैक।
1: तो आज जानेंगे हम लोग थ्रोबैक थर्सडे में।
0: बिल्कुल अंकिता, ये तो आज का हमारा खास सेगमेंट है।
1: तो इसमें बात करेंगे शांभवी पोडार जी धारिणी वाधवान से।
2: नमस्कार शांभवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवाणी के इस खास सेगमेंट थ्रोबैक थर्सडे में।
3: धन्यवाद धारिणी।
2: सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कॉलेज लाइफ को आप कितना मिस कर रही हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, इस शब्द से ही मैं मिस करना शुरू कर दिया है मैंने कॉलेज लाइफ को। आज लगभग 2 साल हो गए मुझे पास आउट हुए हुए, और कॉलेज को मिस करना मतलब यूँ कहूँ कि सारी मेमोरीज़ एक बार ही दिमाग में फ्लैश करने लगती हैं कि किस तरह से हम लोग कॉलेज जाया करते थे, वहाँ की कैंटीन, वहाँ का कैंपस, वहाँ की पढ़ाई, टीचर्स, स्टूडेंट्स और अपने जो फेवरेट जो फ्रेंड होते हैं सबको मिस करना, क्योंकि आज वक्त की कमी के कारण उनसे उतनी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो सारी चीज़ें ही बहुत याद आती हैं कॉलेज की।
2: तो आपको जब अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आती है तो कैसा लगता है, और क्या कुछ ऐसे खट्टे मीठे पल हैं जो आपको सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं?
3: बहुत सी चीज़ें इसमें, सबसे ज़्यादा एक हमारा जब कॉलेज चलता था तो कैंपस में बैठ के, जब मेरा मास्टर्स था तो मेरा नदी के किनारे कॉलेज हुआ करता था, तो हम लोग कभी कभी बंक मार के हमेशा गंगा घाट पे जाके बैठ जाया करते थे। वहाँ पे झालमुड़ी खा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है राजनीति को लेके, और फिर सामाजिक बातें, अपनी पर्सनल बातें भी, तो बहुत तरह की चीज़ें होती थी, बैठ के सारी विषयों पे चर्चाएं चलती थी हमारी। तो जैसे मेरा मास्टर्स है और ग्रेजुएशन दोनों ही मास कॉम से है, तो हमारा एक परिप्रेक्ष्य रहता था कि किस तरह से सोसाइटी को देखा जाए। तो हम लोग छोटी छोटी वीडियोस और सारी चीज़ें बनाते थे चीज़ों को लेकर, कि किस तरह से वहाँ पे, इवन ये भी कि किस तरह से लोग झाड़ू लगा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहे हैं, मतलब जीवन कितना सुगम तरीके से चलता है। और एक जल्द के पास आप जो कहते हैं ना सिंधु

0: सभ्यता से जो हमारी शुरुआत हुई है, और आप वहीं से अपने जीवन की शुरुआत की और वहां पे बैठ के जीवन का आनंद लेना एक बहुत ही अद्भुत पल हुआ करता था।
1: स्टूडेंट लाइफ, खास करके जब हम कॉलेज में जाते हैं, तब हमारा वास्ता थोड़ा फैशन से भी जुड़ने लग जाता है। उस बारे में आप क्या कहना चाहें?
0: हम बिल्कुल, जैसे मेरा जो कॉलेज था वहां पे केवल एक दिन ही मिला करता था हमें फैशन करने के लिए, तो वो सैटरडे हमारे लिए बहुत खास होता था। हम लोग शायद पूरे वीक उस सैटरडे का इंतजार करते थे कि किस तरह से वो सैटरडे आए और हमें मतलब नेल पेंट लगानी है, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहननी है, सब कुछ। और हम लोग कभी कभी जो चीजें नहीं होती थी हम लोग एक दूसरे फ्रेंड से मांगा करते थे कि तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हारे पास वो चीज है। तो वो एक अलग तरह की मेमोरी थी फैशन को लेकर के। मास्टर्स के टाइम में हमें फैशन करने का मौका मिला, बट वो सैटरडे जो स्पेशल सैटरडे हुआ करता था वो बहुत ही खास था।
1: जैसा कि अभी आपने बताया, आपने स्नातक और स्नातक उत्तर दोनों ही मास कम्युनिकेशन में किया है, तो इसका क्या कुछ स्कोप है पटना में?
0: अगर देखा जाए पटना में इसके स्कोप के बारे में, तो कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर से यहाँ पे बहुत कम स्कोप है, लेकिन फिर भी अगर आप लगनशील हैं, प्रयत्नशील हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। जब भी हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमें जहाँ भी जो भी अवसर मिले हमें उसको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। हमें बेहतर ऑप्शन तभी मिल सकता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों से अपनी शुरुआत करें। तो कभी भी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें ताकि हम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे।
1: जी, बहुत खूब बात कही आपने। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी?
0: हाँ, देखिए, जैसे जो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा जब हम अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो एक डेवलपमेंट होता है, हमारी पर्सनैलिटी का हमारा ग्रोथ होता है, तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं कॉलेज टाइम में मैंने ड्रामा में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, उस समय वॉइस ओवर का काम भी करती थी। तो उसके अलावा आप जैसे स्पोर्ट्स है और भी चीज़ें हैं, तो आप उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करिए और अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने का काम करिए। और मतलब एक हमारा पब्लिक फेयर जब ख़त्म होता है तो हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लेते हैं, तो उस ग्रूम करने के लिए पर्सनालिटी को बहुत ज़रूरत है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें।
1: इससे रिलेटेड आप क्या कुछ सुझाव देना चाहिएगा कि और किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएं?
0: देखिए, स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो बच्चों के जो ग्रोथ है उस पर काम किया जाए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बच्चों को ज़रूरत है कि उसको ग्रैब करें उस अपॉर्चुनिटीज़ को। ये अपने आप को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं तो स्कूल या फिर कॉलेज में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि हम जब कॉलेज आए हैं तो हमको सीखने के लिए ही आए हैं, तो उनको ज़रूरत है कि अपनी वो हिचक ख़त्म करके वो जाएं और जो उनको पसंद है उस तरह के एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें।
1: प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ में आपको कितना बड़ा फासला लगता है? क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ समानताएं हैं?
0: देखिए, जो कॉलेज लाइफ होती है वहाँ पे हमारे ऊपर एक छत्र छाया होती है कॉलेज की, उतनी लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं और हम एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं। लेकिन जब कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हैं तो वो छत्र छाया अपने आप ख़त्म हो जाती है और हमारा जो स्ट्रगल का पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। तो स्ट्रगल जो है लाइफ में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत कीजिए और कॉलेज टाइम में स्किल्स डेवलपमेंट पर अपनी ज़्यादा काम करिए, तो बहुत जरूरी है आगे चल के भी आपकी ग्रोथ के लिए।
1: आप आजकल की युवा पीढ़ी को, आजकल के स्टूडेंट्स को क्या कुछ सजेशंस देना चाहिएगा?
0: देखिए, आज जो है आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करिए। मानते हैं आप कॉलेज आए तो कॉलेज में आप अपनी पसंद से ही आए होंगे और आपको वहाँ जो पसंद आ रहा है, जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो उस तरह की चीज़ों को सीखिए, अगर आप सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं तो जो आपको पसंद है आप वो करिए। आप अपनी स्किल्स पे, जैसे मैंने कहा, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ, अपनी स्किल्स पे काम करिए क्योंकि आगे चल के वो बहुत हेल्प करती है स्किल्स डेवलपमेंट हमारी।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और आजकल हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर है कि आप साइंस लीजिए, आर्ट्स और कॉमर्स लेने वालों की तादाद अब भी थोड़ी कम है, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मेरे समय भी यही प्रेशर था। जब मेरा 10th खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी तुम आर्ट्स लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे कॉमर्स लेना है। मुझे ऐसा लगता था आर्ट्स लेने का मतलब है आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट नहीं है। और इस तरह से समाज में वो चीज़ें बनाई गई, आज तो थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन लेकिन उस समय भी इतना ज्यादा ये था कि आप आर्ट्स ले रहे या नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। इस धारणा को खत्म करना है, इस धारणा को खत्म करना बेहद जरूरी है।

0: क्योंकि जो चीजें हमें पसंद है हम उसमें अपना बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें आर्ट्स पसंद है और हम पे टेक्नोलॉजी थोपा जा रहा है जबरदस्ती, तो हम उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने बेहद जो पसंद की चीजें हैं उसे अपनाएं और उसे करें।
1: आजकल जैसा कि हम देख सकते हैं, एरा आ गया है डिजिटलाइजेशन का, हर चीजें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं और यहाँ तक कि पढ़ाई भी अब ऑनलाइन मोड में हो रही है। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी?
0: तो ये खुशी की बात है कि चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो जो घर बैठे लोग हैं वो भी इस चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। जैसे जिनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों को कॉलेज भेज सके, तो वो भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो इसमें डिजिटलाइजेशन होना अच्छी चीज़ें हैं और हमेशा टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो हम और बेहतर कर सकते हैं अपने भविष्य में। कोरोना के टाइम में मास्टर्स था तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस होती थी। कुछ डिफिकल्टी है, उसका कुछ नेगेटिव साइड भी है लेकिन पॉजिटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिला के जब चीज़ें चलती हैं तो बहुत बेहतर होता है। जिस अगर किसी वजह से मैंने क्लास मिस कर दी या किसी भी बच्चे ने क्लास मिस कर दी, तो वो ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करके उस चीज़ को पूरा कर सकता है। तो ये एक बहुत ही खास चीज़ है ऑनलाइन मोड की।
1: जैसा कि आपने बताया, आप को करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा रुचि रखती थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप गाने भी बहुत सुनती होंगी।
0: हाँ जी, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। बचपन से जब मैं FM पे गाने में लगभग 12 बजे उस समय FM चलता था, तो 12 बजे तक मेरी आदत थी कि 10 से 12 के बीच में मैं गाने सुनने के लिए ही जगी रहती थी। अपना फोन आ गया और आप अपने पसंद के गाने YouTube से सुन सकते हैं। उस समय मात्र हमारा एक FM सहारा हुआ करता था गाना सुनने के लिए। तो मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, आज भी पसंद है।
1: तो इसी बात पर आप एक नॉस्टैल्जिक सा गाना हमें सजेस्ट करें।
0: देखिए, जैसे कि कॉलेज लाइफ की बात हो रही है, तो मुझे इससे रिलेटेड एक गाना याद आ रहा है, मस्ती की पाठशाला। तो मुझे ये गाना पसंद है।
1: शांभवी जी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और हमसे बहुत सारी बातें साझा की। इसी के साथ शांभवी जी अब हमसे विदा लेती हैं। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रंग दे बसंती से
1: ये ट्रैक।
0: ये ट्रैक।
1: तो दोस्तों, हर वर्ष कुछ ऐसी विभूतियां की जयंती हमें अपने इतिहास, अपने संघर्ष और अपने राष्ट्रीय गौरव की याद दिलाती है, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
0: बिल्कुल करिश्मा, और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की जिन्हें हम वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं।
1: वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी।
0: जी हाँ बिल्कुल, बचपन में ही उन्होंने देशभक्ति से प्रेरित कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनके भीतर राष्ट्र प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि संकल्प था। उन्होंने पुणे में फंग्यूर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ भी उनका मन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, वे स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए।
1: उन्होंने स्वतंत्रता के लिए केवल विचार नहीं दिए, बल्कि संघर्ष भी किया। उन्होंने युवाओं को संगठित किया, विदेशी शासन के खिलाफ चेतना जगाई और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर भी काफी चर्चित रही है।
0: इस पुस्तक में उन्होंने 1857 की घटना को केवल विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम बताया। यह विचार उस समय बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुछ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वे समाज एकता और सुधार की बात करते थे।
1: यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से भी जरूरी है।
0: अगर आज के युवा वीर सावरकर को कोई सीख लेना चाहे तो वह क्या हो सकती है?
1: बहुत कुछ है, जैसे कि साहस, अनुशासन, पढ़ने की आदत, विचारों की स्पष्टता और देश के प्रति जिम्मेदारी। आज के समय में जब ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं, ऐसे में अनुशासन सबसे बड़ी सीख है।
0: महान व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि चुनौतियां कितनी भी हों, लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए।
1: प्रिय श्रोताओं, आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान, साहस और प्रतिबद्धता जीवन का अर्थपूर्ण बनाता है।
0: यदि हम अपने कार्यों में ईमानदारी, समाज के प्रति संवेदनशीलता और देश के प्रति जिम्मेदारी रखें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो एक छोटी सी प्रेरक पंक्ति है कि साहस वह दीप है जो कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है।
1: जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उनके लिए चुनौतियां भी सीख बन जाती है।
0: वाह करिश्मा, क्या बात कही है।
1: जी, तो दोस्तों, बात करते करते कब इतना समय निकल गया पता ही नहीं चला, क्यों अंकिता?
0: बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा। श्रोताओं, उम्मीद है ये छोटी सी मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, हमें बताइएगा जरूर कि हमारा आज का ये सफर आपको कैसा लगा।
1: आप हमें अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर feedback@patna@gmail.com। आपके ईमेल का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अब हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई बातें, नए अंदाज और ढेर सारी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी दोस्त अंकिता
1: और करिश्मा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब गीत नादक आनंद लेब। गीत नाद सुनौती सुनीता सिंह संगहे कथा पाठ सुनब। विषय होयत पराभव, कथाकार होती प्रेम लता मिश्र प्रेम। मुदा एहि सबसे पूर्व किछु अपना में दू टप्पी सेहो करब। देखो श्रोता मित्र, जल पृथ्वी पर जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण आधार थिक। पीबसँ लऽ कऽ कृषि आ उद्योग लेल ई अनिवार्य अछि। धरती पर करीब 3/4 पानि भरल भेलाक बादो मात्र 3% पीबय योग्य जल उपलब्ध अछि। तैं जलक विवेकपूर्ण उपयोग आ एकर संरक्षण आजुक समयक सबसँ पैघ मांग थिक, जाहिसँ आबयवला पीढ़ीके जल संकटसँ बचा सकब। देखू श्रोता मित्र, बढ़ैत जनसंख्या आ जलवायु परिवर्तनसँ जलक संकट बढ़ैत जा रहल अछि। एहनमे सबसँ पैघ जरूरत अछि जे हमसब जलके बचाबी। एहि अन्तर्गत जल स्रोत, नदी, झील, पोखरिके प्रदूषित होबयसँ बचेबाक सेहो प्रयास करबाक अछि। पानिक संरक्षण लेल स्नान, ब्रश आ बर्तन धोइत काल नलके खुजल नहि छोड़ी। खराब नल आ ओहिसँ चुबैत पानिके बर्बादी रोकी। बरखाके जलके बचाबी आ एकर उपयोग कृषि कार्यमे करी। तहिना कृषिमे सुधार लेल टपक आ फव्वारा सिंचाइ तकनीकके उपयोग करी। एहिसँ हमसब पैघ मात्रामे पानिक बचत कऽ सकैत छी। आरओ आ एसी सँ निकलल पानिक उपयोग तरकारी आ गाछ वृक्षके बचेबामे कऽ सकैत छी। आन साफ सफाइमे सेहो एकर उपयोग कयल जा सकैत अछि। पानिक संरक्षण मात्र सरकारी वा सरकारक जिम्मेदारी नहि थिक, किम्बा प्रत्येक नागरिकके व्यक्तिगत सेहो अछि। ताव हमसब संकल्प ली जे जलक पूर्ण सदुपयोग करब आ एकर एक एक बूंद बचा आबयवला भविष्यके सुरक्षित बनायब। ई तऽ छल किछु अपनामे गपसप। आउ आप कार्यक्रमक आँगनमे प्रवेश करैत छी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई बटगवनी। कलाकार छथि सुनीता सिंह।

0: एखन श्रोता मित्र सुनि रहल छलहुँ ई बटगवनी सुनीता सिंहकेर स्वरमे, हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रममे हिनकासँ आर हमसभ गीतनादक आनन्द लेब, मुदा एखन सुनैत छी कथापाठ। शीर्षक अछि पराभव, कथाकार छथि प्रेमलता मिश्र प्रेम। सुनल जाय।
1: अरहुला अपन छोट सन बैग उठा सीढ़ी दिस विदा भ गेल, मुदा लगले जना बाट हेरा गेल हो, ने आगा बढ़ल भेले आ ने पाछा। पैर में जना जांत बन्हा गेलैक, कतौ जयबाक छैक तकर ज्ञाने नहि रहलैक। भेलै जे सबटा तऽ एतै छैक, एखन ओकरा नहि जयबाक चाही। जाहि भवन मे आइ 10 दिन सँ ओ रमन चमन कऽ रहल छल, ओ कोनो मामूली भवन नहि, ओ एकटा महल छैक, कोनो राजाक महल, राजमहल। एहन महल तऽ ओ कहियो देखनौ नहि छल, जँ देखनौ हैत तऽ बाहरसँ। ओहिमे एना भऽ कऽ रहब तकर कल्पनो नहि कहियो कयने हैत। सब ठाम जतऽ देखी तऽ नक्काशी कयल अद्भुत निर्माण, 60 एकड़मे पसरल ई परिसर अछि। एहिमे की नहि अछि, जहिया बनल हैत ई कोना बनल हैत। घनघोर जंगल, बाहर जंगल, भीतर जंगल, संपूर्ण प्राकृतिक छटा एहि ठाम भेट जायत। जे ताकू से झील, पहाड़, भयानक जानवर सँ लऽ सुंदर मजूरक पर्यंत टेरिसक आगामे नचैत देखब। मैत्रेयी ओकरा घुरि फिर दाना दऽ अबैत छल, बुझू ओकर खेलौना वएह छलैक। सौंसे घरक विशाल निर्माण लगैत छल जे काठे सँ बनल छलैक। भवनक बीच

जतेक पार्टीशन कयल गेल छल सबटा उत्कृष्ट इमारती लकड़ी सँ। उतरबा चढ़बा लेल सीढ़ी सेहो काठेक बनल। ओहि महलमे सांभवी बहुरिया कोरमे एकटा मात्र 6 दिनक नवजात शिशु, ओ बेचारा बच्चा जकर जन्म गणेश चौठक दिन भेल छलैक तैं ओकर नाम राखल गेल छल सिद्धि विनायक। ओ टुक टुक ताकि रहल छल अधखुजल आँखिसँ। जँ अड़हुल चलि जायत तऽ ओकरा देखक भालक जिम्मा हैत एकटा दुलरुआ ओकर मायक छोट बहिन रीतिका पर। मुदा की कयल जाय, 4 वर्षक मैत्रेयी सेहो ओकर विदा होयबासँ व्याकुल भऽ गेल, जोर जोर सँ कानऽ लागल। टिकटक समस्या छल, टिकट फेर 10-15 दिनक बीच भेटबाक कोनो संभावना नहि छल। एम्हर दिया बाती आ छठि पाबनि माथ पर छल। घर पर बूढ़ाक मोन ठीक नहि, छोट बेटा बात बात मे हुरपेटैत रहैत छनि। हुनका इच्छा रहैत छनि जे अरहुला जाथि कतौ मुदा जल्दी वापस आबि जाथि, जाहिसँ ओ निश्चिंत भऽ आराम करथि। छोटकी कल्याणीक इच्छा सेहो सैह जे सबके छोड़ि हमरे मे लटकल रहथि। की कयल जाय, एहना समय मे परजुआरि वाली काकी अरहुला के खूब मोन पड़ैत छथिन। ओ बेसी काल कहथिन, बच्चा एकटा बेटा की आ एकटा टाका की। दोसर बेटा रहित अछि तऽ किछु दिन हुनको लग जाकर रहितौ, दोसरो संतानक तीत मीठ बुझितौ कनेक। काकी कहलथिन, ये अरहुला दाई, लगैत अछि जेना गाय महिष जकाँ केओ एकेटा खुट्टा मे बान्हि देलक अछि, सुख कि दुख सब एके ठाम। काकी के बात सुनला पर अरहुला के रहल नहि गेलनि, अपन दुखनामा पसारि देलनि। अरहुला, काकी की जानऽ गेलियै अहाँ 2-4 बेटा बाली के कष्ट, केओ नहि प्रसन्न रहत अहाँसँ, बात बात मे सब उल्हन देत जे हुनके मानदान होइत छनि, हमर घर मे तऽ कोनो मोजरे नहि। बेटा के तऽ थोड़ थाम कऽ बुझाइयो देब, मुदा पुतहु के किन्नहु नहि बुझा सकैत छी। पुतहु के अपन मोनक बात बुझायब बहुत मुश्किल काज छै, तकर सामर्थ आजुक साउस मे बिरले होइत छनि। काकी गंभीर भऽ गेल रहथि आ कहलखिन, भऽ सकैया अरहुला दाई, अहींके कहब सत्य हैत, मुदा जकरा जे नहि रहैत छैक तकरा लेल मोनमे औनाइते छैक, आहुर मारिते छैक। बेटाक डर छलैक अरहुलाके, मुँह सँ बहरा गेल छलैक टिकटक नाम। बेटा कहलखिन, जयबाक अछि तऽ चलि जाउ, छठियार भऽ गेलैक, कहियो गेला पर समस्या तऽ ठाढ़ हेबे करत ने। सांभवी बहुरिया नहुसँ बाजल रहथि, माँ किछु दिन आर रहि जैतथिन तऽ नीक होइतैक, ओकर छाती फाटि गेलैक, रहब ओकरो नीक लगितैक। एहन भयंकर गलती एक बेर आओर भेल छलैक। मैत्रेयीक जन्मक समय सांभवी लेबर रूम मे रहथि आ टिकटक कारणे बेटा ओकरा ता जबरदस्ती ट्रेन मे जाकर चढ़ायल रहे। सबटा दृश्य अरहुलाके सोझा नाचऽ लगलैक, जँ कतहु जायब तऽ टिकटो एकटा बिपैत अछि, टिकटे नहि भेटत तऽ जायब कोना। नहि जानि आजुक समय मे टिकटक समस्या बड़ कठिन भऽ गेल अछि, जमीन जथा चाहब तऽ भेटब सुलभ, मुदा टिकट भेटब दुर्लभ। दुन्ना तीन गुन्ना पाइ लगाओ तैयो टिकट मे लाइन लगाओ। फेर आइयो अरहुला के जाँच के घड़ी आबि गेल छै, फेर लगै छै ओ फेर आइ ओकरा कठिन समस्या छै, कोना ओ जायत। आब अरहुला की करतथि, ट्रेन के पकड़बाक लेल 100 किलोमीटर जयबाक छलनि आ रातुक समस्या बाट घनघोर जंगलक बीच सँ। बेटा अपना संग एकटा बंदूकधारी के लऽ लेने छलथिन, घुरैत घुरैत ओकरा सबके भोर भऽ जेतैक। अरहुला बेटा के टोकला पर डेग भऽ रहलनि, ता मैत्रेयीक चित्कार शुरू भऽ गेल छल, दादी अहाँ नहि जाउ, दादी अहाँ नहि ने जाउ, दादी। कतबा बुझाओल गेल ओ मानबा लेल तैयार नहि। अरहुला दाई के होइन जे फाटऽ हे धरती, एतेक दुख लऽ कऽ कोना जायब, बाट कोना काटब, कोन सुखक आशामे जा रहल अछि। ताबत बेटाक गाड़ी स्टार्ट भऽ गेल छलैक स्टेशन जयबाक हेतु। ड्राइवर नीचाँसँ हल्ला केलक, चलिए माँ जी चलिए ना, देर हो रही है। अरहुला आइयो जँ ओ दिन मोन पारैत अछि तऽ होइत छैक जेना ठोहि पारि कऽ खूब कानी, मुदा केओ सुनय नहि। आइयो मैत्रेयीक ओ स्वर, दादी अहाँ नहि जाउ, नहि जाउ दादी अहाँ, कानमे स्पष्ट सुना दैत छैक आ ओ पराभवमे पड़ि जाइत अछि।

0: एखन सुनि रहल छलहुँ कथा पाठ, शीर्षक छल पराभव। कथाकार छलीह प्रेमलता मिश्र प्रेम, कथाके लेल हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रममे हमसब आगू बढ़ी, ओहिसँ पूर्व एकटा छोट सन्देश सुनि लेल जाए।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: छोट विराम के पश्चात एक बार फिर से मैथिली कार्यक्रम भारती में अपने समस्त श्रोता के हार्दिक स्वागत। देखू श्रोता मित्र, नशा एक गोट एहन बीमारी थिक जे नहि मात्र व्यक्ति के शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य के बर्बाद करैत अछि, किंबा पूरा परिवार के आर्थिक आ सामाजिक रूप सँ तोड़ि दैत छैक। एकरा समय पर छोड़ब वा छोड़ायब एक गोट उज्ज्वल भविष्य लेल बड़ जरूरी अछि। दीर्घकाल धरि नशा सँ कै गोट पैघ बीमारी के खतरा बढ़ि जाइत अछि। नशा सँ दिमाग के सोचबाक समझबाक क्षमता कमजोर भऽ जाइत अछि, एहिसँ तनाव चिंता आ चिड़चिड़ापन जेहन समस्या सेहो होइत छैक। एहिके लोक जीवन भरि के कमाई एहि मादे संपत्ति सब गवा दैत अछि। एहिसँ बचबाक लेल एकरासँ पाछू छोड़ब जरूरी अछि। आजुक युवा पीढ़ी नशा के एहि दलदल मे फँसि रहल अछि। युवा के एहिसँ ध्यान हटा राष्ट्र निर्माण आ अपन लक्ष्य पर देबाक चाही। नशा के लत सँ बचबाक लेल भारत सरकार के नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत 1-4-4-4-6 पर कॉल कऽ निःशुल्क परामर्श आ मदद लऽ सकैत छी। लग पासक पुनर्वास केंद्र के मनोचिकित्सक सँ मदद लऽ सकैत छी आ एहि लत सँ बचि सकैत छी, अपन आ अपन परिवार के सेहो बचा सकैत छी। एखन कार्यक्रममे अपने सबके सुनबै छी ई महेश वाणी, कलाकार छथि सुनीता सिंह।

सुमधुर सन एखन सुनि रहल छलहुँ महेश वाणी सुनीता सिंहके स्वरमे। देखू श्रोता मित्र, सकारात्मक सोच मात्रे एगो मानसिक दृष्टिकोण नहि अपितु जीवन जीबाक एक कला अछि। ई चुनौतीके अवसर आ असफलताके सीखमे बदलि दैत अछि। ई मानसिक तनावके कम करैत अछि आ हमरा सबके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास आ कार्यक्षमताके बढ़ाबैत अछि। मानसिक रूपसँ स्वस्थ व्यक्तिके रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत रहैत छैक। सकारात्मक सोच लेल सब दिन ओहि चीजके धन्यवाद करी जे हमरा हालक अछि। एहिसँ मनमे संतोष आ खुशीके भावना बढ़ैत छैक। अपन समय ऊर्जावान व्यक्ति लग बिताबी, हुनका सङ्गे नीकसँ गप करी, नीक साहित्यक अध्ययन करी आ स्वयंसँ सेहो संवाद करी। संवाद एहन जे हम की नीक कऽ रहल छी अपितु हमरा की बदलाव करबाक जरूरत अछि। एहिसँ निश्चिते जीवनमे बदलाव आओत आ हमसब आगू सेहो सकारात्मक बनल रहब। एखन कार्यक्रमक समापनसँ पूर्व सुनैत छी ई झूमर, कलाकार छथि सुनीता सिंह, आनन्द लेल जाय।

ताकै टुकुर टुकुर एना है ननदी। सुमधुर सन एखन झूमर सुनि रहल छलहुँ सुनीता सिंह केर स्वरमे। निश्चिते अपने श्रोता सबके नीक लागल हैत से उम्मीद करै छी। देखू श्रोता मित्र, एखन जाहि तरहे औल केर मौसम चलि रहल अछि, एहनमे हमरा सबके अपना आपके स्वस्थ आ सुरक्षित रखबाक लेल किछु जरूरी सावधानी बरतब बड्ड बेसी जरूरत अछि। एहनमे स्वयंके तरोताजा बना कऽ राखब, एहन हमसब सूती कपड़ा एहन कपड़ा पहिरी, धूपसँ निकलबासँ हमसब बची, जाहिसँ हम अपना आपके सुरक्षित आ स्वस्थ राखि सकब। सङ्गहि एहि मौसममे, गर्मीके मौसममे हमसब भरपूर पानि पीबी। किछु किछु देरपर बिना प्यासके सेहो हमसब पानि पीबैत रही। नींबू पानि, नारियल पानि, सङ्गहि छाँछ आओर आन एहन तरल पदार्थक सेवन करैत रही जाहिसँ शरीरमे पानिक कमी नहि होबय। खान पियनके गप करी तऽ हल्का आ तजगर भोजन करी, बेसी तेल मसालावला चीज खायसँ बची। तरबूज, खीरा, ककड़ी जेहन पानिवला फल अपना आहारमे शामिल करी जाहिसँ हमसब अपना आपके तरोताजा बना कऽ राखब। तहिना धूपसँ हमसब बेसीसँ बेसी अपना आपके बचा कऽ राखी। दुपहरमे 11-12 बजेके बादसँ लऽ कऽ साँझुक 4 बजे धरि घरसँ बाहर नहि निकली वा बेसीसँ बेसी अपना आपके झाँपि कऽ निकली। छत्ता वा गमछीके प्रयोग करब बेसी उपयुक्त होयत। तहिना चश्मा, टोपी वा आन हमसब जरूरतके सामग्री लऽ कऽ घरसँ बाहर निकली। घरके सदिखन ठंडा बना कऽ रखबाक प्रयास करी आओर जँ बाहरसँ रौद आबि रहल अछि तऽ ओकरा हमसब ढकि कऽ राखी, झाँपि कऽ राखी। पंखा आ आन हमसब उपयोगी सामग्रीके उपयोग कऽ सकैत छी जाहिसँ रौदसँ हमसब बचाव कऽ सकब। तहिना वृद्ध आ बच्चाके सेहो एहि मौसममे बचा कऽ राखब बड्ड बेसी जरूरी छै, हुनका सबके रौदमे नहि जाय दी। एहन किछु सावधानी अपनायब तऽ निश्चित रूपसँ हमसब एहि रौदसँ बचि सकैत छी। गपसप आर करबाक मोन छल मुदा आब समय

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

7:52 पर आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यभार पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के साथ वार्ता और साक्षात्कार।

8:15 पर आज आप सुनेंगे पॉडकास्ट बातों बातों में। इस पॉडकास्ट में आप सुन पाएंगे IPS विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी

पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना है। अब रउआ सभे चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के ओर से बदलल तारीख और एडमिट कार्ड जारी कल गई बा। NTA के मुताबिक अभी परीक्षा 23 मई, 6 जून और 7 जून के आयोजित कल जाय। आज होवे वाली परीक्षा ईद उल अजहा बकरीद के चलते आगे बढ़ावल गई रहे। NTA की ओर से बतावल गई बा कि इतवार के परीक्षा देवे वाला लइकन के एडमिट कार्ड जारी क दहल गई बा, जकरा के NTA के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कल जा सकेला। 6 जून और 7 जून के परीक्षा देवे वाला बाकी लइकन के एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कल जाय। कुर्बानी के त्यौहार बकरीद आज मनावल जा रहल बा। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनकर बेटा हजरत इस्माइल के कुर्बानी के याद में मनावल जाला। हमार संवाददाता बतैले हैं कि मौका पर अलग अलग मस्जिद और ईदगाह में खास नमाज पढ़ल गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी आज सवेरे खास नमाज अदा कल गई। एने बकरीद के लेके पूरा राज्य में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कल गई बा। संवेदनशील जगह पर एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात बा और सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखल जा रहल बा। बकरीद के मौका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोग के बधाई देले बाड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए महीना के 31 तारीख के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। ई प्रोग्राम मासिक रेडियो कार्यक्रम के 134वीं कड़ी हुई। एकर प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरा नेटवर्क, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कल जाय। वज्रपात के चलते अलग अलग घटना में प्रदेश में 8 लोग के मौत हो गई बा। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2, एकर अलावा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला में 1-1 व्यक्ति के मौत भइल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस घटना पर दुख जतवले बाड़े और मरे वाला लोग के परिवार के 4-4 लाख रुपया के मुआवजा देवे के निर्देश दिले बाड़े। पटना के बाढ़ थाना इलाका के उमानाथ गंगा घाट के पास एगो नाव पलट गई। इस हादसा में 7 लोग डूब गई। पटना के DM डॉक्टर त्यागराजन SM बतौले कि एमए से 3 लोग के शव बरामद कई लिहल गई बा, बाकी 4 लापता लोग के खोजबीन जारी बा। इस हादसा में 7 लोग के सुरक्षित बचा लिहल गई बा। इस सब लोग समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा मोहिदुईन नगर के परवल तोड़ के वापस आवत रहले, इहे दौरान हादसा हो गई। मौसम विभाग के ओर से मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिला के कुछ इलाका में तेज हवा के साथ पानी और वज्रपात गिरे के आशंका जतावल गई बा। यह दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के अनुमान बा। एने पिछला 24 घंटा में कैमूर जिला के भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म जगह रहल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहले कि CBSE के 12वीं के परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमी आइला के बाद अब दोबारा मूल्यांकन के प्रक्रिया शुरू कल जाय। नई दिल्ली में CBSE के अधिकारी के साथ बैठक के बाद पत्रकार से बात करत श्री प्रधान कहले कि अधिकारी ई पक्का करी हैं कि इस सब लइकन के शिकायत के दूर कल जाय और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। गड़बड़ी के जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री कहले कि एकरा के दूर कल जाय और सही समाधान निकालल जाय। श्री प्रधान कहले कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM एगो प्रगतिशील सिस्टम बा। भारत और दुनिया भर के कईन गो विश्वविद्यालय और संस्थान इस सिस्टम के अपना रहल बाड़े। बतौले कि CBSE देश में पहला बार इस सिस्टम के लागू कैले बा। श्री प्रधान बतौले कि करीब 4 करोड़ स्कैन कैल पन्ना के मूल्यांकन पहली बार CBSE OSM तरीका से कैल गई बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म तड़प से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने।

0: अरिजीत सिंह और नीति मोहन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सूर्यवंशी में। इनके इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति।

0: यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिङ्गटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्धविरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढतया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिंशत् कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत् यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनाम् ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्याङ्कनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अङ्कन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मन्त्रिणाम् एतेषां विसङ्गतीनां विषये छात्राणां शङ्का समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामन्त्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अङ्कनप्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पूर्व ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, PV सिन्धुः, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकलक्रीडायां षोडशचक्रे PV सिन्धु जापानदेशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितवती। आगामि स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य NK यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रान्तरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदित सारनः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडाङ्गणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: नमस्कार अंचुला बहन।
1: नमस्ते प्रिया बहन, की हाल चाल है?
0: हाल चाल तो आज थोड़ा बढ़िया है क्योंकि कल
1: हवा
0: से
1: चलते
0: जो
1: है।
0: हाँ कल से जो ये मौसम बदला है ना, तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मन कर रहा है कि थोड़ी और राहत, भले बारिश मत हो, नहीं तो किसानों के लिए दिक्कत हो जाएगी और हमारे लिए भी, पर मौसम थोड़ा ऐसा ही रहे।
1: हाँ।
0: लेकिन ये जो हवा है ना, जिसका मजा ले रहे हैं ना, उसमें वो पहले वाली बात नहीं है।
1: सचमुच कह कि हम भी कल छत पर, कल से तो हवा चलते ही छत पर खड़ा हली और बहुत अच्छा भी लगते रहे, लेकिन बाद में आंख में लगता रहे कि कुछ जैसे किचकिचापन और सटल जैसा, तो हम समझ ली कि जो हवा में बहुत धूल कण
0: धूल
1: और
0: कण, हाँ
1: हवा
0: हाँ
1: प्रदूषित तो है एक तरह से।
0: हाँ क्योंकि जिस तरीके से हम वाहनों का प्रयोग करते हैं और इससे जो निकलने वाला धुआं है वो तो वायु में ही जाता है, और साथ ही साथ बहुत बार, तो अभी तो बहुत सारे नियम आ गए हैं, लोग उसको मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। जैसे ये गाड़ियों को अगर रोकते हैं सिग्नल पे तो भी उसको स्टार्ट ही रखते हैं कि जैसे ही अगर ट्रैफिक सिग्नल मिले तो फटाक से निकल जाए, लेकिन इसका कितना गलत प्रभाव हवा पर पड़ता है
1: बिल्कुल
0: इसके बारे में
1: बिल्कुल
0: सोचना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से आज बिल्डिंग के निर्माण हो रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा सड़क, पुल, पुलिया, भवन बनते हैं, तो कहीं भी देखल जाए कि बहुत जगह नियम तो के उल्लंघन भी लोग करते हैं, और बिना जाली के, बिना इतने ढकले, ऐसे ही मतलब सड़क किनारे इतना धूल हो गए है जेकर हिसाब ना, तो सब वायु में ही घुला है और वायु के प्रदूषित करे। साथ ही साथ जितना रफ्तार से गाड़ी चल रहे है, अब हर आदमी एक गाड़ी लेके निकला है,
0: तो
1: तो
0: ये
1: सड़क पे वाहन
0: हाँ
1: की संख्या इतना ज्यादा हो
0: बहुत
1: गए
0: ज्यादा, तो
1: है।
0: इसमें बहुत जरूरी है ना कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण हम कह रहे हैं, अगर हम सभी ये सोच कर और ये मान के चले जन जन कि हमें इस प्रदूषण को ठीक करना है स्वयं, तो उसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। आप जो बसें हैं, मेट्रो हैं या फिर साइकिल,
1: हाँ
0: साइकिल तो हमारे लिए एक्सरसाइज, आज देखिएगा कि जिम में जाके लोग वही साइकिल चलाएंगे, लेकिन अगर रोड पे चलाने की बात हुई तो स्टेटस की बात आ जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: अगर इन सब का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ कार पुलिंग, अगर जाना है एक ही जगह तो क्यों ना एक साथ बैठ के चले।
1: और दूसरा कि देखते हैं कि तीज त्योहार, खास करके शादी ब्याह में देखिए इतना दिखावा है कि एक पटाखा तो ऐसे फूटा ही जैसे लगे कि मतलब एक तो आदमी के घबराहट भी होवे लगा है, और एक ही साथ 50-50 आवाज के पटाखा, तो ये सब जे है वैसे लोग कर रहे हथिन, तो ये ना सोचते हैं कि भाई ये पटाखा के शोर और एकरा जे निकले वाला प्रदूषण है वो सब हवा में घुल जाए और यही से वायु प्रदूषण के बढ़ावा मिले, तो ये सब पे ध्यान
0: बहुत
1: रखते हैं
0: सारे,
1: कि भाई ना ऐसे
0: और
1: ना करने के
0: हमारे कुछ
1: चाहिए।
0: किसान भाई भी जो हैं वो जला देते हैं, वो क्या उसे मैं कह क्या हम कहते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उसका,
1: पराली जरा
0: पराली,
1: कि हम
0: हाँ
1: सब पुआल भी कहे,
0: हाँ तो उससे भी कितना प्रदूषण हो, जिस
1: बहुत
0: पे रोक
1: प्रदूषण।
0: रोक की बात है। अच्छा ये तो हम बात करें वायु प्रदूषण की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं महिलाओं से जुड़ी हुई जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता स्वच्छता दिवस। माहवारी एक किशोरी और महिला के जीवन की एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन भारत में आज भी ये विषय चुप्पी और रूढ़ियों से मतलब घिरा हुआ है, जो लड़कियों और महिलाओं में शर्म और झिझक का कारण बनता है। ये सामाजिक जो बाधाएं उन्हें अपनी जरूरतें खुलकर कहने से
1: बिल्कुल
0: रोकती है, और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को परिवारों, स्कूलों और समुदायों में अनदेखा किया जाता रहा है। जानकारी की कमी और सामाजिक संकोच की वजह से महावारी को अक्सर छुपाने की चीज समझा जाता है, जिससे किशोरियां बिना किसी मार्गदर्शन और सहारे के रह जाती हैं। मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं है, यह गरिमा, शिक्षा और समानता का भी
1: समान कहते के भी कारण
0: सवाल है।
1: हाँ सवाल
0: जागरूकता
1: है।
0: की कमी, पुरानी रूढ़ियां स्वच्छ उत्पादों तक सीमित पहुंच, मतलब वो कहते हैं ना।

0: पहुंच और अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं की वजह से खराब मासिक जो ये होता है धर्म होता है, लड़कियों की स्कूल हाजिरी सेहत और सामाजिक भागीदारी पर बुरा असर डालती है। किशोरियों को सही जानकारी और सुरक्षित तरीके मिले तो उनका आत्मविश्वास और पढ़ाई दोनों बेहतर होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बतावे के चाहिए मासिक धर्म के बारे में कि कैसे ही घर ही रहने रहे के चाहिए, कैसे स्वच्छता पर ध्यान रखे के चाहिए और स्कूल में चाहे कार्यालय स्थल पर भी एकर व्यवस्था होवे के चाहिए।
0: भारत की किशोरियां पहली महामारी के समय सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। उन्हें सुरक्षित माहौल, सहयोग, परिवार और संवेदनशील स्कूल की जरूरत होती है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ माहवारी को संभाल सके। मासिक धर्म को केवल स्कूलों तक सीमित रखना काफी नहीं, इसके लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। समुदाय, परिवारों और संस्थाओं को मिलकर माहवारी का खुली बातचीत को सामान्य बनाना होगा। स्वच्छ उत्पादों और सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ सके। अच्छी मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सेहत, शिक्षा और गरिमा के लिए जरूरी है और एक समावेशी और समान समाज के निर्माण के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं कि बिल्कुल जानकारी होवे के चाहिए। और देखते हैं प्रिया बहन, हाँ एकरा में हम ही सब करके बढ़ चढ़ करके आगे आवे के चाहिए। और कोई तरह के झिझक ना कि भाई ये खराब चीज है, एकरा बारे में जानकारी ना होना या छिपा लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकरा से संबंधित जो भी बात है
0: वो अब जैसे हाँ। जैसे इस समय जो प्रमुख चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, रूढ़ियां और सामाजिक संकोच ये हमें देखने को मिलता है, भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई बहुत सारी, स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होते हैं कि गंदा या अस्वच्छ उत्पादों का लंबे समय तक उपयोग और साफ सफाई की कमी से प्रजनन तंत्र को मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, तो ये सब पे ध्यान देना। वही खान पान पर पाबंदी इस समय हो जाती है। महावारी के दौरान खाने पीने पर लगाई जाने वाली पाबंदियां खून की कमी, एनीमिया और पोषण संबंधी कमियों का खतरा बढ़ाती हैं। वहीं पढ़ाई पर असर भी डालती है क्योंकि इस समय लड़कियां झिझकती हैं तो वो जाती नहीं है स्कूल की, पता नहीं वहां कोई जान ले तो फिर
1: जान ले और फिर वहां अगर कोई व्यवस्था ना है तो वो महावारी के समय कैसे कौन सी सैनिटरी पैड के उपयोग कैसे करते ना करते वहां पर है कि ना है, यही से झिझक के चलते वो स्कूल घड़ी 5 दिन 6 दिन जो भी
0: तो जरूरी है कि संस्थागत जो कमियां हैं उसे पूरी की जाए। वहीं पर व्यवहार बदलाव के लिए भी जागरूकता बहुत जरूरी है। इस समय बहुत सारे लोग मतलब एक हीनता के भाव से देखते हैं, वो देखने की जरूरत नहीं है। और वहीं ये जो मासिक धर्म है, स्वच्छता उत्पादों पर खर्च करना बर्बादी नहीं है, यह गरिमा, सेहत और उत्पादकता में निवेश है।
1: बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखे के चाहिए कि जो सैनिटरी पैड है उसका इस्तेमाल मतलब मेडिकेटेड रहे उसका इस्तेमाल करे के चाहिए, ना तो पहले के लोग कपड़ा उपड़ा भी प्रयोग में लागल थी जेकरा से संक्रमण होवे के, महिला के तो ऐसे ही संक्रमण होवे के ज्यादा डर रहे है। और ये घर अगर स्वच्छता ना रख हथिन तो संक्रमण जैसे अपने कल थी के मूत्र मार्ग से संक्रमण हो जाए और वो
0: बिल्कुल जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प जो है जैसे कपड़े के पैड और इस तरीके से जो सारी चीजें हैं उसको बढ़ावा देना है, निपटा मतलब ये जो पैड है उसको आप जिससे कि ना वो हर तरीके से महिलाएं सुरक्षित हो। और ये मासिक धर्म अगर नहीं आएगा तो एक समय के बाद एक स्त्री जो कि जननी कही जाती है उस पे असर पड़ता है। तो ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत सारे जो हमारे मतलब हमारे भारत में ही बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं कि जो कि जब मासिक धर्म एक लड़की को आता है तो उसे उसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसे उस तरीके से लेना जरूरी है क्योंकि अगर आ रहा है यानी कि ये प्रजनन के लिए एक समय के बाद,
1: तो इस घड़ी अपने लड़की सबके या बालिका लोग करके भी ध्यान रखे के चाहिए, अपना भी और खुल के बात करे के चाहिए। और जहाँ भी स्कूल में पढ़ाते हैं चाहे कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ भी दोस्त से या अभिभावक से और उनका अगर व्यवस्था स्थान है तो व्यवस्था लगी उनका मांग करे के चाहिए।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल,
1: और
0: ये बहुत ही जरूरी है।
1: स्वच्छता के ख्याल और खान पान के भी ध्यान रखे के
0: तो
1: चाहिए।
0: ये तो हमने वायु प्रदूषण और साथ ही साथ विश्व मासिक धर्म जो मनाए जा रहे हैं उसके बारे में हमने बात की, हिचकने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जैसे हम वादा करते हैं कि हर दिन अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई लोकगीत जरूर लाएंगे, तो
1: बिल्कुल,
0: आज किनकी
1: कलाकार
0: आवाज में
1: हथिन
0: सुनते हैं?
1: सविता सिंह नेपाली से सुनी ही लोकगीत।

0: तो अभी सविता सिंह नेपाली की सुमधुर आवाज में ये लोक भजन हमने सुना। समय रहेगा तो और भी इनसे लोकगीत
1: बिल्कुल
0: जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान का, तो चलिए सुनते हैं।
2: आयुष्मान, ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं।

0: बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध है।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 620-680-3040

0: 6208030 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: तो अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान, और आंगन की घड़ी यहीं समाप्त हुई। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
4: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: हाँ तो प्रिया बहन, हम सब किसान भाई लगी अब

0: बातचीत कर रही, और कही कहल जाए कि बूंद बूंद जिंदगी के, जैसे
1: हाँ
0: बूंद बूंद जिंदगी के मतलब हम लोग लगी जरूरी है, वैसे ही बूंद बूंद जरूरी है ये फसल लगी भी।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी पैदावार जितनी अच्छी होगी हमें उतना ही अनाज मिल
0: बिल्कुल।
1: पाएगा।
0: और एकरा में महत्वपूर्ण भूमिका सिंचाई के होवे कि सिंचाई समय पर होवे के चाहिए और कितना मात्रा में होवे के चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो फसल के अच्छा पैदावार लगी सिंचाई बहुत जरूरी है। तो प्रिया बहन, हम सब सिंचाई के कुछ विधि है जेकरा पर हम सब बातचीत करवे।
1: हाँ, और अगर सिंचाई की जहाँ तक बात है और जिस तरीके से पानी की कमी आती जा रही है, तो ऐसे में अगर हम इस तरीके की सिंचाई की बात करें जिसमें पानी की बचत भी हो
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: उन्नत खेती भी हो, तो कितना अच्छा होगा। तो
0: बिल्कुल
1: फसलों की पैदावार बढ़ाने और पानी की बचत के लिए सिंचाई की कई उन्नत और पारंपरिक विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। बात करें सिंचाई की विभिन्न विधियों की, तो इसमें ड्रिप सिंचाई की विधि में पानी और उर्वरकों को एक पाइप नेटवर्क के माध्यम से सीधे पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे लगभग 60 से 70% तक पानी की बचत होती है और खरपतवार भी नहीं पनपते।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही पानी की बचत के अपने बात करती हैं तो फव्वारा विधि से भी सिंचाई में होवा है, जरा से पानी के बचत होती है। पानी के दब
1: स्प्रिंकलर,
0: स्प्रिंकलर, ओकरा
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: अंग्रेजी में बोले तो स्प्रिंकलर, छिड़काव करके।
1: हाँ
0: और ऐसे हम सब देहाती भाषा में फव्वारा बोले
1: फवारा
0: तो पानी के दबाव के साथ मतलब बरसात की तरह फव्वारा के फसल के ऊपर छिड़काव करल जा हई। ये फव्वारा विधि से सिंचाई रेतीला जमीन और ऊबर खाबर जमीन में अच्छा मतलब मानल जा हई। फिर क्यारी विधि से भी सिंचाई भी हो वही एगो ही
1: मतलब सतही
0: परंपरागत
1: सिंचाई।
0: सतही सिंचाई, वो जो
1: हाँ हाँ
0: क्यारी बना करके पौधा लगावल जाए ओकरा में, एकरा से क्यारी विधि कहल जाए। एकरा से परंपरागत एगो विधि है, एकरा से खेत के चौकोर भाग में बांट देल जा है और एक एक करके सब में पानी भरल जा है।
1: एक एक करके पानी भरा जाता है। और वहीं कूड़ या नली विधि में फसलों को कतारों या मेड़ों पर लगाया जाता है और पौधों के बीच बनी नालियों में पानी छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सिंचाई की विधियां हैं ना, अगर हम इस तरीके से अपनाएं, और ये जो हमने ड्रिप की बात की, फिर हमने फव्वारे की बात की, तो पानी की बचत भी होगी और जिस तरीके की हम उत्पाद चाहते हैं कि उत्पादन उतना ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे मतलब किसान भाइयों और बहनों को लाभ भी मिले और हमारे हमारी थाली तक उस पर्याप्त मात्रा में अनाज भी पहुंचे मिले, ताकि हम संतुष्ट रहें। तभी तो हमारा भारत देश भी कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: इसलिए शायद हम हर उस देश से कहीं ज्यादा संबल
0: और
1: हैं।
0: जी प्राचीन पद्धति में जेकरा कि आप हम अपने भी खेत में देखा होते हैं कि ढेकली जैसे मतलब पानी निकालल जा हल, इस वो ढेकली पारंपरिक सिंचाई विधि के व्यापक रूप में उपयोग पहले भी करल जाए, आज भी करल जाए। ढेकली विधि से कुआं या जल के स्रोत से पानी निकाले लगी लकड़ी के एगो लंबा लट्ठा के उपयोग लीवर के रूप में करल जाए, जेकरा से मतलब खेत में तक ओकरा पहुंचा करके सिंचाई करल जाए।
1: तो ये तो हमने सिंचाई विधि के बारे में बात की, और जैसा कि वादा किया था कि सविता सिंह नेपाली की आवाज़ में हम लोकगीत
0: लोकगीत
1: का आनंद हमारे श्रोताओं को ज़रूर करवाएंगे, तो चलिए
0: सुने
1: सुनते
0: थे
1: हैं।
0: लोकगीत।

0: तो
1: हाँ
0: बहुत ही
1: तो
0: प्यारा ये हमने लोकगीत सुना सविता सिंह नेपाली की आवाज़ में। और क्या विचार?
1: और देखते हैं कि भाई जैसे कि हार्मोन के प्रयोग मानव शरीर में करल जाए, विकास लगी, ग्रोथ लगी, बहुत तरह की चीज़ लगी, वैसे ही फल के वृक्ष में भी हार्मोन के प्रयोग हुए हैं। तो यही पर हम सभी को वार्ता सुनिए, फल वृक्षों में हार्मोन का प्रयोग, और वार्ताकार हथिन सतीश चंद्र।
2: हार्मोन पोषक तत्वों के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं अथवा कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं और बहुत कम सांद्रता पर वृद्धि अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये कार्बनिक रसायन पौधों के निश्चित भागों में सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं और स्थानांतरित होकर अन्य भागों में जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। पौधों में प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाले इस प्रकार के रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं, जबकि प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह के रसायनों को सम्मिलित रूप से वृद्धि नियामक कहा जाता है। फल वृक्षों में हार्मोन का प्रयोग फल फूल लगने, फल का आकार, रंग, गुणवत्ता और पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, बीज रहित फल बनाने में, फलों को गिरने से रोकने के लिए या उन्हें जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन जैसे हार्मोन प्रमुख हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता बढ़ती है। मूल रूप से ऑक्सिन पौधों के

जड़ विकास में, फल लगने में और फलों को गिरने से रोकने में मददगार होता है। जैसे NAA या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको प्लेनोफिक्स नाम से भी जानते हैं, यह फलों को समय से पहले गिरने से रोकने के लिए उपयोग होता है। जिब्रेलिन वर्ग के हार्मोन का उपयोग बीज रहित फल का आकार बढ़ाने में और फूलन को नियंत्रित करने में होता है। साइटोकाइनिन का प्रयोग कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में, फलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए तथा पोषक तत्वों के संचरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वहीं पर गैसीय

में फलों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए तथा पोषक तत्वों के संचरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वहीं पर गैसीय हार्मोन एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने, पत्तियों एवं फूल को गिराने के लिए और बीज की प्रसुप्ति तोड़ने में होता है। इथेफोन जैसे सिंथेटिक यौगिक एथिलीन का निर्माण करके फलों को पकाने या गिराने में मदद करते हैं। एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जिसका प्रयोग बीज की सुप्त अवस्था को बनाए रखने और विलगन को नियंत्रित करने के लिए होता है। इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धि नियामकों का प्रयोग सदैव सही समय पर और सही मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो पत्तियां झुलस सकती हैं या फल गिर सकते हैं। प्रत्येक हार्मोन को लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करना चाहिए और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान बंधुओं से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि फसल प्रबंधन में सहायता करने वाले वृद्धि नियामकों का प्रयोग इनके वर्गीकरण के अनुसार करें तो अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। पीजीआर का उपयोग कर फलों की परिपक्वता को अग्रिम या विलंबित किया जा सकता है। कटाई के अलावा फसल उत्पादन विधाओं में शारीरिक श्रम के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पीजीआर उपयोगी हैं क्योंकि वे किसी तरह से भी पौधों के विकास को संशोधित कर सकते हैं। यह पौधों में हार्मोन के जैव संश्लेषण, चयापचय या संचरण में हस्तक्षेप करके हो सकता है, या पीजीआर द्वारा पौधों के हार्मोन को प्रतिस्थापित करके या पूरक के रूप में होता है। फल वृक्षों में हार्मोन का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, जैसे प्रवर्धन में। फल वृक्षों में ऑक्सिन का सबसे पहला उपयोग कलम या गूटी द्वारा पौध तैयार करने में किया गया। इसमें आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला हार्मोन है आईबीए। आईबीए और एनए जैसे सिंथेटिक ऑक्सिन जड़ के विकास के लिए बहुत प्रभावी हैं। आमतौर पर गुटी या कलम प्रवर्धन में आईबीए का प्रयोग करते हैं, जो बाजार में रूटेक्स या सेरेडेक्स के नाम से आता है। उदाहरण स्वरूप अमरूद में कलम प्रवर्धन या गुटी बांधते समय या स्टूल लेयरिंग करते समय आईबीए का 5000 ppm यानी 5 ग्राम प्रति लीटर घोल का प्रयोग करते हैं। शरीफा में स्टूल लेयरिंग हेतु आईबीए का 2 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का प्रयोग करते हैं। अंगूर की कलम प्रवर्धन में आईबीए का 3 ग्राम प्रति लीटर तथा लीची में लेयरिंग करने के पूर्व 250 ppm इथरेल से स्टॉक पौधों का पूर्व उपचार तथा लेयरिंग करते समय 5000 ppm इथरेल के साथ 250 ppm हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलाकर उपचार करना उचित होता है। ऑक्सिन का प्रयोग फलन को बढ़ावा देने के लिए भी करते हैं, जैसे NAA या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग फलन या फ्रूट सेट को बढ़ाता है। यदि फल वृक्षों पर अधिक मात्रा में फल लग जाएं, तो फिर इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः फल वृक्षों से अत्यधिक संख्या में युवा फलों को हटाना एक सामान्य उद्यान प्रबंधन अभ्यास है, जिसको फल या फूल विरलन कहते हैं। इनको हटाने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, बचे हुए फलों का आकार बढ़ाकर कुल विपणन योग्य उपज बढ़ाना, और दूसरा, साल दर साल उत्पादन स्तर को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए, ताकि द्विवार्षिक मंदी की घटना को कम किया जा सके। इस प्रकार से फल के आकार पर फल के विरलन का प्रभाव संभवतः पत्ती और फल के अनुपात से संबंधित है। अंगूर में NAA का 2 से 5 mg/L प्रयोग फूलों के पूर्ण खिलने के 7 से 20 दिन बाद प्रभावी होता है, जबकि नेफ्थलीन एसिटामाइड का प्रयोग इसी अवधि के दौरान लगभग 17 से 34 ppm की सांद्रता पर प्रभावी होता है। उपरोक्त के अलावा हार्मोन के प्रयोग से फलों के गिरने पर रोकथाम भी कर सकते हैं, जैसे आम, अंगूर, नींबू आदि के परिपक्व फल परिपक्वन से पहले ही गिरने लगते हैं। इससे फसल की संभावित उपज कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप फसलों की तोड़ाई वांछनीय समय से पहले शुरू करनी पड़ती है, जिसके वजह से प्राकृतिक परिस्थितियों में फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। नींबू वर्गीय फलों में 25 मिलीग्राम प्रति लीटर 2,4-D के उपयोग से फलों को गिरने से रोका जा सकता है और फलों की तोड़ाई को गर्मियों तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों में पीजीआर के उपयोग से फलों का गिरना कम किया जा सकता है, जैसे आम की अल्फांजो किस्म में NAA या 2,4-D का 25 मिलीग्राम प्रति लीटर, नीलम में 2 से 4-D का 30 मिलीग्राम प्रति लीटर, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा में 2,4-D का 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, सिट्रस के नेवल ऑरेंज किस्म में 2,4-D का 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, वैलेंसिया ऑरेंज में 2,4-D का 4 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर,
तथा मौसमी में 245 टीका 30 मिलीग्राम प्रति लीटर। यदि पौधे के ऊतकों को ऑक्सीन की सुपर ऑप्टिमल सांद्रता के संपर्क में लाया जाता है तो जड़ और अंकुर की वृद्धि बाधित हो जाती है और कोशिका विभाजन और विभेदन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः बागों में गैर चयनात्मक खरपतवार नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

0: सकता है। अंगूर में फलों का आकार और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बीज रहित किस्मों पर जीए या जिब्रेलिक एसिड का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यदि फूल आने के पहले 20 मिलीग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं तो फल की चमक को बढ़ा देता है और इससे ढीले गुच्छे बनते हैं जो बदलते मौसम के दौरान बीमारी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। जीए पराग व्यवहारता के साथ साथ अंगूर में बीजांड उर्वरता को भी कम कर देता है। फूल खिलने के समय जीए के प्रयोग से फ्रूट सेट में कमी आती है जिससे प्रति गुच्छे में फलों की संख्या कम हो जाती है परंतु शेष फल का वजन और लंबाई बढ़ जाती है। फूलन की अंतिम अवस्था से लेकर शुरुआती फल लगने की अवधि के दौरान जीए के एक अतिरिक्त अनुप्रयोग से फल का आकार बढ़ता है। फलों के परिपक्वन के समय को विलंबित कर फलों की उपलब्धता के समय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे नींबू में फल परिपक्वन को विलंबित करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है ताकि मई से लेकर अगस्त के दौरान फल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके जब मांग अधिक होती है लेकिन उत्पादन कम होता है। पुष्प कलिका के उत्पादन में तेजी लाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग वसंत के समय करना चाहिए। साथ ही पुष्प कलिका निर्माण को प्रेरित करने हेतु डाई एमिनोजाइड या क्लोरेम क्वार्ट जैसे विकास अवरोधक हार्मोन का प्रयोग करके वृक्षों की लंबाई को कम करते हैं और इस प्रकार से वानस्पतिक विकास को रोककर फ्लोरल बड को उत्प्रेरित किया जाता है। फल वृक्षों के विकास में वातावरणीय बाधाओं से निजात पाने के लिए भी जीए यानी जिब्रेलिक एसिड का उपयोग पौधों में निष्क्रियता या सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें पूर्ण विकसित होने के लिए पर्याप्त शीतलन अवधि नहीं मिली है। जीए का प्रयोग आमतौर पर पुष्प कलिका विकास के लिए आवश्यक शीतलन अवधि का विकल्प हो सकता है। हालांकि इससे शीतोष्ण जलवायु वाले फल वृक्ष प्रभावित होते हैं फिर भी यदि उपोष्ण जलवायु में आम के वृक्षों को शीतलन या चिलिंग ब्रेक न मिले तो फूलन पर प्रभाव पड़ता है। हार्मोन का प्रयोग अब फल वृक्षों के प्रजनन में भी हो रहा है जैसे नरबंधिता के प्रेरण में प्रजनन चक्र को छोटा करने में किशोरावस्था को कम करने में कभी कभी डिस्टेंट संकरणों में भ्रूण विकृत हो जाता है तब भ्रूण बचाव तकनीक के इस्तेमाल से इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है। भ्रूण के विकास और ऑर्गेनोजेनेसिस की इस तकनीक में फिर से पादप वृद्धि नियामकों की अहम भूमिका है। फलों के पकने में एथिलीन की भूमिका होती है चाहे पेड़ पर हो या तुड़ाई उपरांत। परिपक्व फलों में पकने की प्रक्रिया को इथेफोन के प्रयोग से तेज किया जा सकता है। अंगूर में इथेफोन फल के रंग को अच्छा बढ़ावा देता है। इथेफोन उपचार तब भी उपयोगी हो सकता है जब फलों का प्राकृतिक रंग पहले से ही आकर्षक न हो। ऐसा देखा गया है कि इथेफोन के प्रयोग से फूलों की कलियों की सुप्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप फूल खिलने में विलम्ब होता है जिससे फूलों को वसंत ऋतु के ठंड से होने वाले नुकसान की संभावना कम हो जाती है। फलों में एक समान रंग का विकास फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है जिसके लिए डाई एमिनोजाइड के उपयोग से फलों की त्वचा और गूदे में एंथोसायनिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रंग विकास की दर बढ़ जाती है और साथ ही संश्लेषित वर्णक की कुल मात्रा भी बढ़ जाती है। सेब में डाई एमिनोजाइड मेथियोनिन के ACC में रूपांतरण को अवरुद्ध करके एथिलीन उत्पादन को रोकता है और श्वसन क्लाइमेट्रिक की उपस्थिति में देरी करता है। हार्मोन का प्रयोग वृक्षों का आकार नियंत्रित करने में भी करते हैं जैसे आम के पेड़ों में शाखाओं के बढ़वार को रोकने के लिए पैक्लोब्यूट्राजाल और अन्य ट्राइजोल सबसे प्रभावी यौगिक हैं। प्रभावी उपज बढ़ाने गुणवत्ता में सुधार और जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ कटाई की सुविधा के लिए पादप वृद्धि नियामक फसल उत्पादन बढ़ाने और सीमित संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए कृषि में पूरक प्रौद्योगिकियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पादप वृद्धि नियामकों का उपयोग अब हर साल दुनिया भर में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलों की विविधता पर किया जाता है। हालांकि इनमें से अधिकांश अनुप्रयोग खेत की फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों तक ही सीमित है और इन पादप वृद्धि नियामकों के अधिकांश वर्तमान उपयोग ऐसे यौगिकों के लिए नहीं है जो सीधे फसल की उपज बढ़ाते हैं या कुल जैविक उपज या फसल कटाई सूचकांक में वृद्धि करते हैं बल्कि ऐसे यौगिक अधिक सामान्य हैं जो फसल की गुणवत्ता बढ़ाकर आकर्षक लाभ प्रदान करते हैं या अधिक कुशल प्रबंधन में सहायता करते हैं। जिब्रेलिक एसिड का उपयोग साइट्रस में छिलके संबंधी विकारों की घटनाओं को कम करने के लिए किया जाता है और सेब में डाई एमिनोजाइड का प्रयोग फल के रंग को एक समान करने में किया जाता है। दोनों उपचारों से फसल का मूल्य तो बढ़ता है लेकिन उपज नहीं।
1: हाँ तो प्रिया बहन देखते हैं कि कितना बढ़िया वार्ता हम सब सुन लिए और श्रोता लोग भी सुनल थीं फल वृक्ष में हार्मोन के प्रयोग। और अब एगो लोकगीत फिर से हम सब सुनिए सविता सिंह नेपाली के स्वर में।

0: वाह, सविता सिंह नेपाली के स्वर में हम सब इतना बढ़िया बढ़िया लोकगीत के लिए, और ये शिव भजन हले तो सविता सिंह नेपाली के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और साथ ही साथ समय हो चला है अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, कल फिर आना है तो आज जाना होगा। नमस्कार अंजुला बहन।
0: नमस्ते प्रिया बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर कहा कि श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि PMAYG के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAYG के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
1: कल राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी है। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है।
3: कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं। मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है, जो बिहार सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज पूरी अकीदत और

0: पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। एक रिपोर्ट।
1: त्याग और समर्पण के संदेश का पर्व बकरीद को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। अमन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में भी विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 26 से 28 मई तक बेंगलुरु में खेले गए इस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बताया कि शैलेश कुमार और हिमांशु यादव ने पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य के मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 39.9 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से 1 व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई।

0: चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने हजारों युवाओं को नौकरी दिए। एक रिपोर्ट।
1: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ जो 27 मई तक चला। मेले में कुल 10,882 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में जर्मनी, जापान, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान समेत विभिन्न देशों में 1,984 प्रतिभागियों को रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में भाग लेने आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने अपना अनुभव साझा किया।
2: भरोसेमंद मेला है के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई आईटीआई किया है उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
1: रोजगार मेले के सफल समापन के अवसर पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा के पास आज सुबह एक नाव हादसे में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट।
1: आज समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहिउद्दीन नगर से वापस लौटने के दौरान एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह लगभग 5:45 पर हुई। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बींद टोली के कुल 14 लोग नाव पर सवार थे। राहत और बचाव दल के द्वारा 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि अब तक 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। अन्य 4 लापता लोगों की खोज की जा रही है। समस्तीपुर जिला प्रशासन और पटना जिला प्रशासन के द्वारा समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: मुंगेर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास खड़ी एक पिकअप वाहन से 15 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप और 180 लीटर शराब जब्त की है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक और पहाड़ी क्षेत्र ऋषि कुंड मलमास मेले घूमने आई एक बच्ची की कुंड में स्नान करने के दौरान मौत हो गई। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 1032 बोतल केन बियर बरामद किया है। वाहन में सवार 2 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। वहीं जिले के शेखोपुर सराय के डोबाडीह से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय बाईपास रोड के नोनही मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एक नेपाली नागरिक को 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंकौल गांव में एक बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन सुबह 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
4: आसमान में सिर उठाकर

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
1: लखीसराय जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 562 एकड़ भूमि चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि भविष्य में यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। वर्तमान में लखीसराय बियाडा क्षेत्र में कुल 23 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 21 संचालित हैं। इनमें 20 राइस मिल शामिल है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रूपेश कुमार झा ने बताया कि सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के 12 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों को सौंपे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार बालगुजर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बढ़िया प्रखंड के पाली, लखीसराय के महिसोना और हलसी के कैंदी पंचायत में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। लखीसराय बाईपास रोड ओवरब्रिज के स्पैन में दरार आने के बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव द्वारा की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बाईपास रोड ओवरब्रिज के दोनों छोर पर लोहे का बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 30.74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पिपरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन निर्माण के शिलान्यास में भाग लिया। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने वाले जिले के 15 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिवों पर लगातार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने का आरोप है। जिले के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। बीते दिन पटना में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत जिले की सभी 76 पंचायतों के राजस्व गांवों में अगले 30 मई तक विशेष अभियान चलाकर किसानों का आईडी बनाया जाएगा। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को फार्मर आईडी अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इधर राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभान्वित पेंशनधारियों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा पेंशनधारियों को नया डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

0: है ताकि किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन भुगतान को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार जब तक लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा तब तक उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी जाएगी। जिले में अब तक 30,567 पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है जिसके कारण उन्हें पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की निदेशक प्राची कुमारी ने बताया कि पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लखीसराय संग्रहालय में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति प्राधिकारी सह संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष मृणाल रंजन ने किया।
1: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: इन्हीं सवालों और विमर्श के साथ आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्तंभकार, लेखक और साथ ही पटना विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर गुरु प्रकाश पासवान जी। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी के उपनिदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार जी, जो इस चर्चा में अपनी दृष्टि साझा करेंगे। आप दोनों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल गुरु प्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी कि 12 वर्षों के इस सफर को अगर एक व्यापक नजरिए से देखें तो आप भारत के राजनीतिक इतिहास के रूप में कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तनकारी कालखंड रहा है बीता 12 वर्ष?
3: नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पिछले 12 वर्षों में जो बुनियादी काम हुए हैं बहुत ही क्रांतिकारी हैं, प्रगतिशील हैं और भविष्योन्मुखी हैं। यदि आप आर्थिक जगत की बात करिए, सामाजिक जगत की बात करिए, वैश्विक जगत की बात करिए, हर मोर्चे पे, हर मंच पे भारत आज एक युगांतकारी परिवर्तन की ओर बढ़ता दिख रहा है। 12 वर्ष हुए हैं, ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। मुझे आज भी स्मरण आता है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी सदन में प्रवेश कर रहे थे, सदन का उनका प्रथम भाषण है और प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं कि मेरी सरकार के केंद्र में यदि कोई रहेगा तो वो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और दलित रहेगा। और यदि 12 वर्षों का आप मूल्यांकन करें तो आप ये पाइएगा कि अंत्योदय के संकल्प को भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय से प्रेरित है। तो अंत्योदय यानी क्या? पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण समग्रता से कैसे हो, हमारी विकास की जो परियोजनाएं हैं वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, समावेशी कैसे हो, ये फलीभूत होता हमने देखा है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी कल्याणकारी बातें हैं जो जिसने हर व्यक्ति को छुआ है, लगभग 140 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है और उसी का परिणाम है कि हम 2014 में, 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है ये हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
4: अच्छा गुरु प्रकाश जी, एक चीज बताइए कि मुख्य 5 काम ऐसे हमको बताइए जो 12 वर्षों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रमुख है या इससे जनता लाभान्वित हुई है।
3: नहीं देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि एक स्थायी बदलाव डिजिटल इंटरफेस का, टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में जो हुआ है, यदि आप आंकड़ों की बात करें तो यूपीआई से 22 अरब ट्रांजैक्शंस हुए हैं और लगभग 28.5 लाख करोड़ का लेन देन हो गया है। आप ग्लोबल वैश्विक डेटा को यदि एनालाइज करिएगा तो आप पाइएगा कि विश्व भर में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें 49% लगभग, मानिए कि जो आधी ट्रांजैक्शंस जो भी डिजिटल हो रही है वो भारत में ही हो रही है। ये एक परिवर्तनकारी प्रयास है और कई बार सदन में कहा गया था, चुटकी लेते हुए कहा गया था कि भाई सब्जी वाले के पास आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करिएगा। आज ये बात बहुत ही आम हो गई है कि कौन आम कौन खास, हर व्यक्ति के पास डिजिटल यूपीआई इंटरफेस है, स्कैन करके पेमेंट कर देना। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि विदेश की बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे बैंक हैं, विदेश मंत्री जो जयशंकर जी एक बार भाषण में कह रहे थे कि उनका यूएई जाना हुआ था, यूएई के जो वहां पे शासन में लोग हैं उन्होंने कहा कि हम आपके यूपीआई के मॉडल से सीखना चाहते हैं। तो यूपीआई एक प्रथम काम हो गया जिससे मुझे लगता है कि एक बुनियादी परिवर्तन का हम लोग आधार मानते हैं।

0: डीबीटी जो इसका दूसरा पक्ष है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए लगातार लोगों के खातों में गए हैं। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि 3.5 लाख करोड़ का हम लोगों ने लीकेज रोका है। तो एक ये भी समय था जो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो जमीन पे मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये एक लीकेज का रुकना, ये गुड गवर्नेंस का, सुशासन का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। तीसरा जो इसका पक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कहता था कि 65% जो लोग हैं उनके बैंक में खाते तक नहीं है। आर्थिक छुआछूत या फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी का एक माहौल था, एक वातावरण था। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा था 2011 में कि 47 वर्ष लगेंगे इस आर्थिक छुआछूत, इस फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी को समाप्त करने में। लेकिन मात्र पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है कि 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते जनधन योजना से, मैंने अभी आपको डीबीटी का आंकड़ा दिया, यूपीआई का आंकड़ा दिया। तो ये बुनियादी परिवर्तन आम जनता, आम व्यक्ति के जीवन में हमने देखा है। इन तीन के अलावा 2 प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आज इसमें 50 करोड़ से अधिक बेनिफिशियरीज हैं। तो कोई भी व्यक्ति अस्पताल पहले जाता था, उसके मन में चिंता होती थी, व्यथा होती थी, जो कि होनी स्वाभाविक भी है कि भाई पैसों की व्यवस्था कहां से होगी। तो सरकार ने सुनिश्चित किया है, क्या प्राइवेट अस्पताल क्या सरकारी अस्पताल, हर जगह आयुष्मान कार्ड लेकर के आत्मविश्वास के साथ, एक ताकत के साथ हम लोग जाते हैं और अपने परिवार में कोई मरीज है तो उसके उपचार में हमें सहायता मिलती है। और पांचवी और आखिरी बात जो मुझे लगता है कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वो है कि अनुच्छेद 370 और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का खात्मा। कहा गया था कि भाई कैसे खत्म होगा, अनुच्छेद 370 पे तमाम बातें होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है तब से वहां विकास की परियोजना हो, आंतरिक सुरक्षा हो, जम्मू कश्मीर की महिलाओं हो, जम्मू कश्मीर के दलित आदिवासी भाई बंधु हो, उन सब के लिए एक समग्र विकास का मॉडल तैयार हुआ है। मुझे स्मरण आता है कि नक्सलवाद, हम लोग बिहार में बैठे हैं और बिहार में ज्यादा नहीं 20-25 वर्ष पहले ही वो जेल कांड हो या नक्सलवाद की हिंसा हो, तो हम सब ने देखा है उसको, हम सब ने जिया है उसको, कि गांव के गांव में नरसंहार हो जाया करते थे, लक्ष्मणपुर बातें हो, शंकर बीघा हो। और मुझे 2009 का समय याद आता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो नक्सलवाद है, रेड कॉरिडोर कहा जाता था, 200 से अधिक जिले उस कॉरिडोर में आते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो नक्सलवाद, अनुच्छेद 370 और ये कल्याणकारी योजनाएं थी जो 5 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था।
1: नहीं, एक चीज, जैसे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने दिया है बिहार को, उसमें पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं?
0: नहीं, देखिए, पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी प्राथमिकता है। पटना में ही हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग शुरुआत से पटना में ही रहे। पटना शहर का मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देना चाहता हूँ कि अटल पथ हो, मरीन ड्राइव हो, अशोक राजपथ पे डबल डेकर पुल हो, इससे आम जनजीवन में लोगों के, सामान्य लोगों के मूवमेंट में, आवागमन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेट्रो की योजना क्रांतिकारी है, बुनियादी है, एक स्टेज शुरू हो गया है, दूसरे स्टेज पे काम हो रहा है हर शहर में। पटना का जो जनसंख्या घनत्व है, यदि आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में, उसमें मेट्रो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। आगामी समय में टाइम बाउंड तरीके से, अभी तो मलाही पकड़ी का ही स्ट्रेच शुरू हुआ है, लेकिन बाकी स्ट्रेच को भी कैसे प्रारंभ करें और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण पटना मेट्रो बनकर के उभरे, इस पे हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा।
1: अच्छा, एक चीज ये था कि जिसको गेम चेंजर कहा गया कि देश को गेम चेंजर, किसानों की लाइफ स्टाइल को जिसने बदल दिया, उसको दो उनकी योजनाएं थी प्रधानमंत्री की, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, इसको आप किस रूप में एनालिसिस करते हैं?
0: नहीं, देखिए, अन्नदाता हमारी प्रायोरिटी में, हमारी प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। और यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को भी देखें तो 2000 रुपए के माध्यम से, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना को देखें कि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो कैसे संरक्षित करेगा, फसल बीमा योजना के माध्यम से देखें, अब उसके बेनिफिशियरीज तो हमारे करोड़ों में है, लेकिन एक आंकड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीएम किसान सम्मान का, कि 12 करोड़ से अधिक जो हमारे किसान बंधु हैं, किसान बहनें हैं, वो आज इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी निरंतरता से कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स में जो

0: उपयोग केमिकल का हो रहा है वो स्ट्रक्चरली संस्थागत तरीके से कम हो, और नीम कोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हम प्रयास कैसे करें। तो समग्रता से एक योजना हम बना रहे हैं, FPOs फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव के माध्यम से भी इसका प्रयास है। और जैसे गुजरात में अमूल है, अमूल के तर्ज पे बिहार में सुधा ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन बाकी मॉडल्स हम कैसे विकसित करें, किसान कृषि संबंधित जो उत्पाद हैं उसका वैश्वीकरण कैसे हो, हम इस दिशा में एक रोड मैप और एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। आज केंद्र में भी शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका लंबा अनुभव रहा है, उस अनुभव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। तो समग्रता से किसानों का फसल बीमा, मृदा संरक्षण, फर्टिलाइजर और उत्पादन पे कैसे काम हो, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं।
1: किसानों की आय बढ़ी है, सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है?
0: नहीं, अगर आप ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आंकड़ा उठा करके देखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2004-5 में धान का कितना था और आज कितना है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। दोगुनी क्या हुई है, तीन गुनी, चार गुनी हो गई है। दलहन हो, गेहूं हो, धान हो, अलग अलग जितने भी अनाज के अपने उदाहरण होते हैं, यदि आप वो आंकड़ा उठा करके देखिएगा, कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो दोगुनी क्या, तीन गुनी और चार गुनी हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है तो किसान भाइयों को सुधार मिलता है, उसका सीधा लाभार्थी कोई होता है तो किसान भाई होते हैं। कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हमारे उत्पाद लंबे समय तक फ्रेश रहे, सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे उत्पाद ग्लोबली, प्रधानमंत्री जी कहते हैं फार्म टू फोर्क, कैसे आप खेत से उठ करके हमारे प्लेटों में आए, 5-स्टार में जाए, अमेरिका में जाए, यूरोप में जाए, आज तमाम ऐसे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं और हम सब आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम इसको और फलीभूत होता देखेंगे।
2: एक सवाल है मेरा गुरु प्रकाश जी आपसे, कि हम यहाँ उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं 12 वर्षों में जो सरकार की उपलब्धियां रही, और एक तरीके से कहा जाए तो मोदी विजन के तौर पर, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये चुनौतियां बनी हुई है। मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँ तो क्या कहेंगे बेरोजगारी और महंगाई पर?
0: अच्छा सवाल आपने पूछा, और देखिए कुछ चीजें अरुण जेटली जी कहते थे लेगेसी इश्यूज होते हैं, लेकिन लेगेसी इश्यूज होने के बावजूद यदि हम आंकड़ों पे बात करें, तो मैं पहले बात बोला आपको कि फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 में आए हैं। आप CPI इन्फ्लेशन होता है, औसत महंगाई दर का यदि आप एक आकलन करिएगा, तो आप देखिएगा कि औसत महंगाई दर जो CPI इन्फ्लेशन UPA के समय 8-10% रहता था, वो 4-4.5% है, लगभग आधा। UPA का एक ऐसा दौर आया था जब 28 में से 22 महीनों में महंगाई दर 9% से अधिक था, महंगाई दर ने डबल डिजिट को भी छुआ था। आज महंगाई दर को आप देख लीजिए कि वैश्विक संकट होने के बावजूद, इजराइल पैलेस्टीन का मामला हो, लेबनान का मामला हो, रशिया यूक्रेन का मामला हो, वेस्ट एशिया क्राइसिस का मामला हो, हुरमुस का मामला हो, 76 दिनों तक सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जो आम जनता है उस पर इसका बोझ ना आए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1,000 करोड़ का नुकसान सहा, लेकिन आज जब नॉर्वे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, तेल 200 रुपए, 100 रुपए, 160 रुपए मिल रहा है, तो भारत में ये प्रयास है कि कम से कम दबाव कैसे हो। हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि आज CPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन, टैक्स टू GDP रेशियो, करंट अकाउंट डेफिसिट, वित्तीय अनुशासन हमारे लिए प्राथमिकता रही है। तो अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्वास्थ्य जो हमारा है, जो हमारा हेल्थ ऑफ इकोनॉमी है, वो सशक्त है, वो रोबस्ट है, पहला। दूसरा, देखिए बेरोजगारी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज देश में बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न्स हैं, $1 बिलियन से अधिक का जिनका कैप है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां हम 132वें पोजीशन पे हुआ करते थे, आज हम 63वें पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हमारे देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कैसे बने, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। सरकारी नौकरियों का भी यदि आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा, तो 3 गुना अधिक सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई हैं 2014 से लेकर के आज तक में। तो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, निश्चित रूप से लेगेसी इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद एक रोबस्ट इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि सशक्त होती है, मजबूत होती है, दीर्घकालिक रूप से निश्चित रूप से इसका समाधान निकालने के लिए प्रयासरत रहती है।
2: एक सवाल मेरा है कि अगर मैं आपसे रैपिड अंदाज में पूछूं, यानी एक शब्द में पूछूं, संक्षिप्त में, तो बीते 12 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसको आप कैसे देखेंगे और क्या एक नाम देंगे, परिवर्तन, विकास या कुछ और नाम जो आपको सूझ रहा हो?
0: अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम रूपांतरण कहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसको रूपांतरण मानता हूं कि आज हमारी सोच में, आज विश्व भारत को जिस प्रकार से देखता है, आप बाहर जाइए तो भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है,

0: और पुनः मैं तीसरी बार बोल रहा हूं कि फ्रेजाइल फाइव से हम टॉप फाइव की ओर बढ़े हैं। G20 की अध्यक्षता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो, भारत कहता है तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाया जाता है, तो आज निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और भारत के अंदर भी बिहार के विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल असम के चुनाव हो, भारी संख्या में भारत के लोगों का जन समर्थन, जन आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, जो हमारे लिए एक आशीर्वाद का काम करता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बातचीत में हमने ये समझने की कोशिश की कि बीते 12 वर्षों में बड़े फैसले जो लिए गए, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे, शासन प्रणाली या वैश्विक पहचान को किस तरह प्रभावित किया गया, साथ ही उन सवालों और चुनौतियों पर भी हमने चर्चा की जो लोकतांत्रिक विमर्श का आज हिस्सा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी और आकाशवाणी के उपनिदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म धरती कह पुकार से इस गीत को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए पॉडकास्ट बातों बातों में। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे आईपीएस विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पॉडकास्ट बातों बातों में। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: जी हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं हम बता दें विकास वैभव जी 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
2: देखिए मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूं। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और बीआईटी सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं दी, तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहां जहां पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
1: जी।
2: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात IIT कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और IIT से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला

0: इंडियन पुलिस सर्विस, तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
1: जी, बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की आईआईटी कानपुर से, उसके बाद फिर यूपीएससी की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
0: देखिए, प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7th में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान, जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था, लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई, तब 9th में था, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे, तो उसके बाद आईआईटी की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और आईआईटी के पेपर 1997 में, अगर आप याद करेंगे, लीक हुए थे, उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट्स के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, आईआईटी कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय, बोरोनी रिफाइनरी टाउनशिप, फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम, जिसको कह सकते हैं, एक ऐसी घटना घटी। घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन अब वही कैंपस में रही है। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है, जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में आईटी में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने आईटी में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी, और उसी का नतीजा है कि आईपीएस बना और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने, या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद ASP, CTSP, सीनियर SP, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल, आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में, जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में ASP के रूप में पहली पोस्टिंग हुई और 2005 के अंत में ASP दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी। वहीं से CTSP पटना बने, फिर बघा SP, रोहतास SP के रूप में पोस्टिंग हुई, जहां अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए, जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था, जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है NIA, जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। NIA बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे NIA के लिए रिलीज किया गया और NIA के शुरुआती दिनों में NIA के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। NIA जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव, विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहां से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था, तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर SP के रूप में, जहां पहले ASP भी रहा था, CTSP भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर SP के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे, तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर DIG बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष DIG के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है, जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में ब्लास्ट हुए थे। उस समय NIA में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझें कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्रे किया हुआ था। और जब पटना ब्लास्ट हुआ, तो लगभग वो संदेह

0: यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी। कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं। इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है उसको?
0: तो मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि
1: जी
0: बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा। तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है, द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर। तो पुलिस
1: जी
0: के जीवन
1: जी
0: में खतरा जो है वो तो उसका अंग है,
1: अंग
0: उसको लेके हम लोग चलते
1: जी
0: हैं। और
1: जी जी
0: कई अवसर आते हैं, मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी। लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बगहा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है। लेकिन जो दो अनुभव बगहा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर भी हुए और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां
1: जी
0: जब
1: जी
0: सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए, जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनेपिंग के रूप में हुआ करती थी शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था। 2002 में DFO शहीद हुए थे, 6 में DSP शहीद हुए थे बिक्रमगंज में। अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे। लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज अति यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गाँव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला। और जब अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम है और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सभी गाँव में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपने विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है, बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहाँ स्थापित हुआ, केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूँ क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूँ कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था, जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है और तब वह संभावना जगती है जहां हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी। जातियां प्राचीन बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंद वंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब हम उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आपके बातचीत से हमें यह पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझे वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिए, जैसे वेदों में जब हम लोग पढ़ेंगे, सारी ऋचाओं को देखेंगे, तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा हो होती जब है तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, चाहे नासदीय सूक्त हो उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की क्या उन्हें भी पता है कि उनकी रचना किसने की। वेदांत में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस रूप में मिलता है जब हम चार महावाक्यों को देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि

0: तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है और अपनी पूर्णता लिए हुए है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसका अंश है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है जिसमें हर व्यक्ति उस सृष्टि के मूल तत्व से एकाकार समझने लगता है और इससे पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और इसमें जिन्हें हम कहीं दूर खोज रहे थे उनको अपने अंदर स्थित पाते हुए जीवन को देखते हैं। तो इससे एक तो एक व्यक्तिगत दृष्टि बदलती है, साथ में समाज में यदि इस प्रकार का भाव जगे तो समाज में भी जो भेदभाव हमें आपस में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो मिट जाते हैं। तो बिहार में वेदांत की दृष्टि के कारण बहुत सारे अपवाद हम प्रस्तुत कर सके। तो आज भी मुझे लगता है कि यदि जो भेदभाव समाज में हमें भिन्नता की ओर ले जाते हैं, वेदांत की दृष्टि के साथ यदि हम चलेंगे तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर
1: अभेद की
0: सकते हैं।
1: स्थिति उत्पन्न होगी, कोई भेद नहीं
0: कोई
1: रहेगा।
0: भेद नहीं रहेगा।
1: जी बिल्कुल, ये वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अद्वैत अभेद। इसके अलावा वेदांत के पहले भी जो चार पांच आस्तिक दर्शन थे, क्या वो विलुप्त प्राय हो गए हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई अभी?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप में अद्वैत ही है जो जिसने भारतीय संस्कृति को एक वैचारिक दृष्टि दी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाकी ज्ञान परंपराएं रही हैं तो विलुप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। अभी भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। अनेक ऐसे चिंतक आज भी आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ट्रेडिशन है उसमें अद्वैत मूल में है, लेकिन उसका एक अलग रूप हम देखने को पाते हैं। भारतीय संस्कृति को जिस जो भी समझना चाहेंगे तो जो
1: जी
0: हमारे 6 दर्शन जिस प्रकार से बात होती है तो उसको
1: जी
0: यदि पढ़ेंगे तो हम अपना एनरिचमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में विश्व को भी कुछ नया देने की दृष्टि ला पाते हैं। जो आपने बात पहले कही, ये
1: जी
0: कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था जिसमें कि अलग अलग प्रकार से वेदों की यदि
1: उद्भव
0: हम बात
1: होते
0: करें
1: गया, विकास
0: तो
1: होते गया।
0: इवोल्यूशन होता गया
1: जी
0: और वेदांत एक समय आया जब लगा इससे कुछ ज्यादा नहीं सोचा जा सकता,
1: ज्ञान
0: ये उत्कर्ष प्राप्त हमने
1: पराकाष्ठा।
0: कर लिया।
1: जी
0: तो मुझे गर्व इस बात की होती है कि उस भूमि जहां वेदांत का दर्शन सिद्ध हुआ बिहार की भूमि रही, और
1: जी
0: इसी बात को मैं युवाओं को बार बार बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि ने कभी वेदांत का दर्शन किया हो, विश्वविद्यालय देखे हो, उसमें आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है,
1: जी
0: बशर्ते हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने का प्रयास बिहार में करें।
1: जी
0: आधुनिकता की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ परंपराओं से जुड़े रहने की, अपने परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से हवा आ सके,
1: जी
0: लेकिन सतर्क ये रहना चाहिए, ध्यान ये रखना चाहिए कि हवा इतनी तीव्रता के साथ ना आए कि हमें उड़ा के ले जाए। तो मतलब है कि अपने अस्तित्व को समझते हुए बाहरी दर्शन को भी समझना होगा, और जो भी नए चीजें चल रही हैं जैसे आज AI का युग है, डेटा एनालिटिक्स का युग है, तो हमें उसमें भी उत्कर्ष कैसे प्राप्त करें, उनका उपयोग कैसे करें, इस पर भी चिंतन करना होगा। लेकिन साथ साथ जो मूल तत्व हमारे संस्कृति के हैं उसको नहीं समझेंगे तो हम जो गहराई एक व्यक्ति में होनी चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
1: जी अगर हम इसी क्रम में वैदिक गणित की बात करें तो वेदों में वो गणित और कई सिद्धांत ऐसे दिए गए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं और उनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक अच्छा कर सकते हैं। आगे हम वेदांत की ही बात करें, आपने महावाक्यों की बात कही है, तो थोड़ा विस्तार से, थोड़ी सरलता से हमारे श्रोता समझना चाहेंगे कि वो महावाक्य कौन-कौन से हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए, इसमें एक कहानी जो आती है उपनिषदों में, वो श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक जो महर्षि थे उनकी
1: जी
0: आती है। जब उद्दालक श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है, तो श्वेत केतु नहीं दे पाते हैं। उनको समझाने के लिए बताते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन को देखने पर जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो कहता है मिट्टी के बर्तन है, जिस प्रकार सोने के आभूषण को देखने पर व्यक्ति देखते ही कहता है सोने के आभूषण है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है एक तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं, सोने के आभूषण सोने से बने हैं, उसी प्रकार सब कुछ जो भी सृष्टि में है वो एक परम तत्व से बना है और परम तत्व से ही तुम भी बने हो, तो तुम वही हो तत्वमसि। उसी प्रकार से उस भाव को यदि हम ये देखें तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी वही तत्व हूँ, उसी तत्व से बना हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो मतलब जो मूल सृष्टि का तत्व है उससे हम अलग नहीं है, हम भी उसी से बने हैं। और जिस प्रकार जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को देखने पर कहता है ये मिट्टी का बर्तन है क्योंकि मिट्टी को जानता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो मूल तत्व को जानता है, वो किसी को भी देखेगा तो कहेगा ये भी तो उसी से बना है, उसमें कोई विभेद नहीं रह जाता। तो यही मूल रूप से वेदांत की दृष्टि है जिससे हमारी पूरी संस्कृति अत्यंत प्रभावित हुई और एक वैचारिक उत्कर्ष की स्थिति बिहार ने पूरे देश को दी।
1: जी यानी कि वेदांत में हम देखें तो ज्ञान की बातें, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या वेदांत में भक्ति का भी कुछ स्कोप है?
0: देखिए भक्ति जैसे वेदांत में गीता को भी उपनिषद का भाग माना गया है ना, तो गीता उपनिषद कहा जाता है। तो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म ज्ञान और भक्ति तीन मार्ग हो सकते हैं उन तक पहुंचने के। उसमें भक्ति वेदांत उस रूप में हम जानते हैं, उसमें बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उसको काफी और अगले स्तर तक ले गए। आज इस्कॉन मूवमेंट

0: भक्ति वेदांत पर ही
1: जी
0: आधारित
1: जी
0: है।
1: जी तो वेदांत में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सिद्धांत समाहित है। वेदांत में आत्मा और मोक्ष की क्या अवधारणा है?
0: देखिए मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को समझ जाता है तो जान जाता है कि वो उसी पूर्णता को लिए हुए है और अंत में वही जाना है। तो ये जीवन की प्रासंगिकता है।
1: वेदांत की बात हम करेंगे आगे भी। आपने लेट्स इंस्पायर बिहार की चर्चा की, तो ये क्या मुहिम है? क्या ये अध्यात्म से जुड़ा है? क्या ये समाज सेवा से जुड़ा है? क्या शिक्षा से जुड़ा है?
0: देखिए लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है एक विकसित बिहार बनाने का 2047 तक, ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। बिहार की क्षमता असीम है जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन इस असीम क्षमता के साथ यदि हम आपस में संघर्ष करेंगे तो जहां हम पहुंचना है नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये प्रयास है लोगों को प्रेरित करने का और उनको कहने का कि अपने अपने हिस्से के बिहार में जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उसको हम करें। आज लगभग 3,60,000 स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें लगभग 30,000 महिलाएं हैं, लगभग 25,000 उद्यमी हैं। इन सभी व्यक्तियों को जोड़ने से हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रकल्पों का निर्माण का जिससे समाज को कुछ लाभ मिले। अभी बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिनमें 2,500 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से वंचित है अध्ययन करते हैं। इनमें से 28 केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के नाम से संचालित है। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की क्रांति बिहार में लाने के लिए अनेक स्टार्टअप्स को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, ताकि उनको हम समय समय पर सहयोग कर सकें, उनको मेंटोर कर सकें। लगभग 600 स्टार्टअप्स इस अभियान के साथ आज जुड़ी हैं। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 के अंत तक स्थापित हो सकें जिनमें 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो। इससे एक ऐसा बीजारोपण होगा जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर आएंगे, और इसी की आवश्यकता बिहार को है। आज स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम की भी आवश्यकता है, इसीलिए बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं जिनका मूल बिहार से है ऐसे लोगों को भी जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, और बड़ी संख्या में आज बिहार के वैसे लोग जो विदेशों में रहते हैं बड़े महानगरों में रहते हैं वो सक्षम है इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उनमें से 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने जब प्रेरित किया तो उनके द्वारा अपने गाँवों में कुछ न कुछ योगदान किया जा रहा है। किसी ने लाइब्रेरी खोली है, किसी ने स्कॉलरशिप स्थापित की है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया है, या अन्य किसी प्रकार से भी लोग योगदान कर रहे हैं। तो यही इस अभियान की दृष्टि है। तीव्रता के साथ बिहार बढ़े, लगभग 15% का ग्रोथ रेट आए, और पर कैपिटा इनकम जो बिहार का सबसे भारत में कम है उसको हम अन्य राज्यों के स्तर तक ले जा सकें, अग्रणी ले जा सकें, यही इसकी दृष्टि है।
1: तो क्या जो युवा हैं बिहार के या जो बाहर जो प्रवासी हैं, क्या इससे जुड़ रहे हैं? कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं?
0: देखिए 5 वर्ष हुए हैं और 3,60,000 लोग सीधे रूप में जुड़े हैं, तो अपने आप में बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने कि हजारों लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, तो ये सुखद संकेत है। और जिस दिशा में हम चल रहे हैं मुझे लगता है निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी।
1: लक्ष्य 2047 तक बिहार को
0: जी बिल्कुल पूर्ण विकसित बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया, जिसमें समाज के हर अंग की क्या भूमिका होनी चाहिए इसको भी हम लोगों ने चिन्हित और रेखांकित करने का प्रयास किया है।
1: युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ?
0: बहुत आसान है, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका अपना वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के माध्यमों से भी जा सकते हैं, उसमें लिंक पर आप रजिस्टर करें, वेबसाइट पर सभी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी दिए हैं, उनको भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, तो काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक ये मुहिम है, और हम उम्मीद करते हैं कि काफी युवा इस मुहिम से जुड़ेंगे। हम बात करेंगे आपके हॉबीज के बारे में। आप, जैसा कि हमने पढ़ा है आपके प्रोफाइल से कि आप इंडियन हिस्ट्री फिलॉसफी के मर्मज्ञ हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, बहुत ज़्यादा आप यात्राएं करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, और क्या कुछ खास, क्या गीत संगीत में भी कुछ रुचि है आपकी?
0: देखिए दर्शन में बहुत रुचि है, इतिहास में रुचि है, तो पढ़ता रहा हूँ बहुत। आज भी मेरे घर पे एक पुस्तकालय है जिसमें करीब 5,000 पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, तो जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ, भ्रमण करता हूँ, गीत संगीत भी यदा कदा सुनता हूँ। और यदि फेवरेट गाने की बात करें तो ए मालिक तेरे बंदे हम मुझे बहुत पसंद है, जो अक्सर सुनता हूँ, और जब भी कुछ कठिन घड़ी आती है तो उसको पुनः सुन। मैं राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं में बराबर पढ़ता रहता हूँ, याद करता हूँ। एक कविता है आशा का दीपक, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इस कविता की पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया स्टूडेंट लाइफ से ही, और आज भी जब कुछ कठिन चुनौती सामने आती है तो कविता की पंक्तियों का स्मरण करते हुए स्वयं को संकल्पित करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जीवन में हार्ड एस्पेक्ट्स भी हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स भी हैं, और सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते जाना है।
1: जी, तो कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं, और आपकी पसंद का ये गीत ए मालिक तेरे बंदे हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: गीत संगीत के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम है इनसे मिलिए पॉडकास्ट बातों बातों में। गीत के पहले हमने विकास वैभव जी से उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, आईपीएस रहते हुए उनके जो उपलब्धियां हैं, उनके संघर्ष के बारे में और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें की, काफ़ी प्रेरणादायी बातें हुई। आप लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में भी बातें हुई। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। वापस हम वेदांत के ही सवाल से अंत करना चाहेंगे कि वेदांत में एक जगह कहा गया है कि औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार साक्षात या अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म ब्रह्म कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो जाता। तो ये एक मौलिक प्रश्न यहाँ ये उठता है, तो किस प्रकार जो है ब्रह्म का अनुभव किया जाए या जिज्ञासु कैसे शुरुआत करें?
1: देखिए, इसमें एक मंत्र, एक श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिस हो जाते, यानी एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी सब कुछ भोगता है और दूसरा पक्षी केवल दिखता रहता है। तो अपने जीवन में यदि हम इसकी कल्पना करें, तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं अंतर्मन हमें सचेत करता है जब कभी हम कुछ गलत करना चाहते हो, और यदि हमने कुछ गलत किया तो मन बार बार कहता है कि तुमने गलत किया है। तो जब सही करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो ये जो भाव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ये दूसरा पक्षी है जो कुछ ग्रहण नहीं करता, केवल देखता है, साक्षी भाव है, और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में है। जिस दिन हमने उस साक्षी भाव को, उस अंतर्मन को एक प्रबल स्थान दिया, उसके हिसाब से हम चलने लगे, तो जीवन की संतुष्टि अपने आप और बढ़ जाएगी और जीवन हमारा सार्थक होगा। तो मूल रूप से इसी कल्पना को यदि हम, इस सामान्य सी जो बात हमारे अंतर्मन में कहता रहता है, अंतर्मन की हम सुनेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे।
0: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज सुधारने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, क्षमता हमारी असीम है, वेदांत की दृष्टि भी यही कहती है, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते। तीन प्रकार के

0: होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो आपके मन में यदि इच्छा है, निष्ठा है और प्रयास करते हैं, सफलता के लिए आवश्यक ये दोनों ही नहीं है, सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम दृढ़ संकल्पित हों, दृढ़ निश्चय के साथ हम प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति में कैसे भी विघ्न बाधा आए हम रुके नहीं। मैं सभी से यही कहूँगा, पूरे परिश्रम के साथ सफल हो जाएं, और एक बार सफल हो जाते हैं, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल स्वयं तक नहीं, थोड़ा अंशदान समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी जरूर दें, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा।
1: बिल्कुल, खुद सफल हों और लोगों को भी सफलता की ओर प्रेरित करें, यह आदर्श आपका है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे सीनियर IPS श्री विकास वैभव। आज हमने इनसे कई आयाम, इनके जीवन के कई आयाम पर बातें की और काफ़ी प्रेरणादायक इन्होंने बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे, इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। विकास वैभव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, प्रेरणादायक संदेश हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट बातों बातों में। इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे थे IPS विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का

0: कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल

0: ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत

0: तन्हाई रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
0: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और

0: कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
1: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डी के शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में आइंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज आइंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहस मुबासे, इत्तफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली

0: कानून साज असेंबली में 1930 तक मरकजी कानून साज असेंबली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिल्ला ने कहा कि इस मजमूए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर परवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर मुमलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लहो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, गुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था اور ان کے مجموعے کلام

0: आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले तीन दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं, बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे,

0: जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे, और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
0: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए, और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
0: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस

0: हम कहते हैं, या चाय कॉफी ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए इसमें, ऐसे ही मदिरा ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है। तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यावहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खास तौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के

0: कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights.
3: This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
4: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
5: Thank you.
4: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
6: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
4: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please explain elaborately about the UCC and also in simpler terms talk about what the bill is all about and what does it aim to achieve?
5: As you told, that is the third state in India to enact UCC, Uniform Civil Code. Silent features of bill is all about banning polygamy. That is the first thing. Second thing is about live-in relationship. And third thing is about giving equal rights to the women.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म कृष्णा कटेस से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है श्रेया घोषाल ने।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म उत्सव से इस गीत को। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जिद्दी में। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और चंद्राणी मुखर्जी के स्वर में इस गीत को। फिल्म है जुल्म की पुकार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आंखों में है तारों में एक चेहरा जनाब का।
1: बीबी हो तो ऐसी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। ले जी आप सुनिए महेंद्र कपूर के स्वर में इस गीत को, जो है फिल्म निकाह से।
0: अभी अलविदा मत कहो।

यशोदास को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नैया में। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में इस गीत को, जो है फिल्म लेकिन से।

0: चित्रा के गाय फिल्म बॉम्बे की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश

इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देव राय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।